0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: तुम्हारे अगर वादे सच्चे होते तो आज हमारे दो बच्चे होते। आज जब मैं ऑफिस आ रही थी, आई सॉ दिस ऑन द बैक साइड ऑफ अ टेम्पो एंड आई वाज लाइक, यार ये कितना सही है। मतलब अपने एक्स को अगर आप ग्रीफ देना चाहते हो तो उसे सिंपली ये मैसेज लिखकर भेज दो एंड आई थिंक द मैसेज विल बी हर्ड लाउड एंड क्लियर। बट मुझे एक बात बताओ, टॉकिंग ऑफ एक्सेस, अपने एक्स के बारे में वो एक क्या चीज़ है दैट यू मिस अ लॉट? कुछ तो होता होगा, इतना बुरा इंसान भी नहीं हो सकता आपका एक्स। और अगर है कोई ऐसी चीज़, वाई डोंट यू शेयर इट विद मी मॉर्निंग ग्लोरी। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE। सो हिट मी अप विद व्हाट्स ऑन योर माइंड एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
6: Only on

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने सेलिब्रिटीज की पूरी एल्बम बना कर रखी है, लेकिन द फन थिंग इज कि जब भी आपको नॉटी होना होता है आप उन सेलेब्स की एल्बम्स को रेफर करते हो. OMG,
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: ऐसे ही अमेजिंग सीक्रेट्स बताने के लिए व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
1: कैसे हो आप?
3: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आपने मुझे जब अपना कन्फेशन लिखकर बताया ऑन इंस्टाग्राम, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड, क्योंकि ऐसा कन्फेशन मैंने बहुत सालों में नहीं सुना है. तो एक्चुअली आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है? व्हाट इज दैट कन्फेशन?
3: यार रोशी क्या बताऊँ यार, तेरे को पता है कि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती हूँ, जैसे सबका होता है कि मतलब अलग अलग तरीका होता है टर्न आउट होने का, लेकिन मेरा ये है कि मेरे को जब तक गढ़वाली या पहाड़ी गाना नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं टर्न ऑन नहीं हो सकती बिल्कुल भी.
1: सीरियसली?
3: इवन मैं तो कितनी बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब बीच बीच में भी मैं गाने भी लग जाती हूँ.
1: ओके, वन सेकंड. तो आप बेसिकली हो कहाँ से? क्या आप इंडिया के, लाइक आर यू फ्रॉम इंडिया? कौन से कोने से हो इंडिया के?
3: मैं इंडिया के मतलब गाजियाबाद में रहती हूँ.
1: हाँ.
3: उत्तर प्रदेश के अंदर आती है.
1: हाँ. तो फिर ये पहाड़ी गानों का शौक कहाँ से लगा आपको?
3: क्योंकि मेरा होम टाउन, मतलब मैं उत्तराखंड से ही हूँ, होम टाउन मेरा उत्तराखंड ही है. वो होता है ना एक अलग सी वाइब.
1: हाँ,
3: मतलब
1: हाँ,
3: वैसी वाइब मेरे को गढ़वाली सॉन्ग ही दे सकते हैं, ना पंजाबी ना कोई.
1: हाँ,
3: सिर्फ गढ़वाली गाने.
1: तो आप मतलब बीच बीच में गाने भी लग जाते हो, तो मेरे लिए भी गा के सुना दो, मुझे पता चलेगा कि यार मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं.
3: बिल्कुल गा सकती
1: हूँ.
3: बेड़पा को बारमासा, बेड़पा को बारमासा, और भी गा के सुनाओ.
1: नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है?
3: इसका मतलब होता है कि मतलब हमारा एक वो होता है ट्री है.
1: हाँ.
3: वो 12 मतलब मंथ्स में.
1: हाँ.
3: 12 मंथ्स में उसमें फ्रूट होते हैं.
1: हाँ.
3: ये होता है इसका मतलब.
1: बट यू नो लाइक आई डोंट गेट वॉट योर वाइब इज, क्योंकि मैं जब स्पेनिश गाने सुनती हूँ एंड आई गेट इन द मूड, मुझे पता भी नहीं होता उन स्पेनिश गानों का मतलब क्या होता है. बट आई रियली लाइक द फैक्ट दैट आपने मुझे फोन करके बताया कि यार रोशी लाइक गढ़वाली सॉन्ग्स रियली डू इट फॉर मी. अपनी तरफ से क्या मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ?
3: बिल्कुल,
1: ये लीजिए. आई मीन मैं ये गढ़वाली किसी भी लाइक मेलोडी में नहीं कर रही हूँ, बट
4: यू बिन रोशिफाइड.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: काम डाउन माई भगजनो, आपने जब अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई की थी तब मुझसे पूछ के नहीं की थी, उसे झूठ बोला था, मुझसे पूछ कर नहीं बोला था, लेकिन अब जब आपके साथ वो कॉन्फ्रंटेशन करने वाली है एंड शी वॉन्ट्स यू टू शो अप इन पर्सन, माई ओनली सजेशन टू यू इज ब्लू कलर के कपड़े पहन कर जाना। जब भी किसी झगड़े में सामने वाले इंसान ने नीले रंग के कपड़े पहने होते हैं, दे एक्चुअली टेंड टू काम द एंटायर सीन डाउन। अर्थात जहां आपकी गर्लफ्रेंड 100% लाल पीला हो रही है, प्लीज पार्डन माय कलर पन, वहीं वो आपके ब्लू कपड़ों के आसपास आते ही कम से कम 40 डिग्री ठंडी हो जाएगी एंड शी विल बी लेस मैड एट यू। यू आर ऑलरेडी वेलकम फॉर दिस टिप। अगर आपको ऐसे ही पर्सनलाइज टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB, एंड व्हाइल यू डू दैट नॉरी बॉय कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: It's 8:30 PM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

से शाय भी हो, देन हाउ डू यू आस्क अ गर्ल आउट फॉर अ डेट? आई विल टेल यू. आज मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, चिल कर रही थी, एंड सडनली दिस रियली क्यूट गाय फ्रॉम आर एडवर्टाइजिंग साइट कम्स अप टू मी एंड सेज, रोशी एक हेल्प चाहिए थी. एंड आई वाज लाइक, हाँ बताना. एंड ही इज लाइक, यार एक ना बहुत ही क्यूट बंदी है कॉलोनी में एंड मैं बहुत शाय हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क हर आउट. हम एक दूसरे से मिलते हैं बिकॉज वी शेयर द कॉमन जिम, लेकिन आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से टू हर एंड मैं उसके साथ चिल करना चाहता हूँ आउटसाइड ऑफ द जिम. एंड आई वाज लाइक, एक काम कर, तू उसे बोल देयर इज अ ग्रेट मूवी रिलीजिंग दिस फ्राइडे, तू फिगर आउट कर दे कोई भी पिक्चर है, मे बी अ रोम, तू फिगर आउट कर दे कोई भी पिक्चर है, मे बी अ रोम कॉम और लाइक एन एनिमेटेड फिल्म और वट एवर, जो इजी ऑन दी आईज है, और उसे बोल कि यार फ्राइडे को ना बहुत सही पिक्चर रिलीज हो रही है और मैं सोच रहा था कि तुझे चलना है साथ में, वी कुड लाइक हैंग टुगेदर इन स्टफ. नाउ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो तुझे कहेगी कि यार नहीं मुझे पिक्चर नहीं अच्छी लगती, या तुझे कहेगी कि हाँ हम कर सकते हैं बट वीकेंड पे मैं बिजी हूँ. अब क्योंकि आपने एक पिक्चर प्रपोज की है जो सिनेमा हॉल में बैठे एक पूरे हफ्ते कम से कम लगेगी, इवन इफ इट्स अ फ्लॉप, आप उसे बोलना हाँ ठीक है अगर वीकेंड पे बिजी है वी कैन डू इट ऑन मंडे और ट्यूजडे, टिकट भी सस्ती, हॉल भी खाली, व्हिच एवर वे यू लुक एट इट, you kind of win. To agar apni zindagi mein you are a similarly shy guy, then try this trick and once it works for you, thank you kisko bologe, mujhe hi. Aur wo karne ke liye mujhe dhoondna hai Instagram par ya Facebook par, mera naam hai Mirchi Roshi, naam ke spelling hai ROCHIE. So go ahead, jaanu maanu, do what you need to do, lekin kahin mat jana jana kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है बिकॉज आई एम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद यू दैट वो जगह ऑफ इंटीमेसी भर जाती है थैंक्स टू यू. मैं इसलिए ये कह रही हूँ बिकॉज इंस्टाग्राम पर आई मेट राजबीर. वी हैड अ कॉन्वर्सेशन इंस्टाग्राम पर अबाउट हिज लाइफ एंड ही इज मैरिड बट देर वॉज अ छोटी सी स्टोरी दैट राजबीर वॉन्टेड टू टेल मी. एक्चुअली राजबीर डिडंट वॉन्ट टू टेल मी, मैं ही उनको कह रही थी कि आई वॉन्ट टू नो. फाइनली ही रिलेंटेड. हाय राजबीर.
2: हेलो. हाय.
1: आपकी आवाज बहुत हॉट है. जस्ट आई विश यू वर्न मैरिड.
2: वी कैन स्टिल लुक अराउंड बिकॉज़ आई एम इन दिल्ली कनॉट प्लेस के आसपास ही रहता हूँ तो आप बताइए.
1: नहीं, मतलब मैं तो बहुत ही संस्कारी .com हूँ बट और वैसे भी ना आपको आई डोंट थिंक ऐसे कोई काम करने चाहिए क्योंकि हम इसी बारे में इंस्टाग्राम पर बात कर रहे थे. ऑन अ मोर सीरियस नोट, यू आर मैरिड एंड मैंने फिर आपसे ये भी पूछा था कि व्हेन यू आर मैरिड डोंट यू गेट टेम्प्टेड, क्योंकि अगर आपकी आवाज इतनी हॉट है, आई हैव सीन योर फोटो, यू आर वेरी हॉट ऑल्सो. Don't you, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में कभी there was like a moment of temptation?
2: See, I'll tell you, being very honest, temptations हर किसी को होते हैं, healthy a guy, healthy a girl. Some overcome that temptation by just ignoring it. Some of us, like me, you know, fall into the temptation trap. And when you fall into that trap, sometimes you are lucky that you don't get caught. Sometimes you're very lucky that you get caught.
1: आपके साथ क्या हुआ था?
2: I was very lucky.
1: Got caught?
2: Yes. So, temptation is like, as I, you know, I was just thinking about it. Temptation is that pool of fishes, you know, where you get into a deep dive. Suddenly, you find that one lovely fish that you always wanted to eat. And the fish is ready to be served to you in the way, you know, being prepared, you know, with all the, you know, flavors of life. And it's being served to you. And you cherish the relationship or the fish or, you know, your temptation to the best, to the T. And when you get back home, you have a bad stomach because it's been caught that you've had your food outside.
1: Wow.
2: So, ab jab ye hota hai, to aage ki kahani hai, aur wo bhi after your marriage. It's a very, you know, dicey situation, what to do, how to, you know, cover up and stuff. You don't have anything because all the proofs and everything are in hand.
1: Jesus.
2: Because the fish that I was intimated with, magarmach, jisem.

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Saad Jeeturaj. Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई जो एक ग्रीक कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है। होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को। वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है। तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स, ओडिसी एक बार अवश्य देखें। अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो पेट्रोल और डीजल के इंक्रीजिंग प्राइसेस से परेशान हो चुके हैं, देन आई हैव ओनली वन सजेशन फॉर यू। अपने शहर में रोमांस करो ना। किसने कहा है इंटरस्टेट रोमांस करने का? अगर दिल्ली में हो तो मेरठ की लड़की मत पटाओ, अगर मेरठ में हो तो फरीदाबाद का लड़का मत ढूंढो। अपने ऊबर रेडियस को, अर्थात द अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स यू आर विलिंग टू ट्रैवल टू गेट योर डेट, अपने डेटिंग एप्स पर कम कर दो। मेक इट 10 किलोमीटर्स और लेस, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी ही कोई और वाहियात बेवकूफों वाली प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन आपको तो नहीं मिल रहा है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप? मे बी इट टेक्स टू बेवकूफ्स टू मेक अ रेजोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE। यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरी मम्मी से ज्यादा स्मार्ट रिलेशनशिप एडवाइजर कोई भी नहीं है. तो वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड जनरली रिलेशनशिप्स के बारे में, बिकॉज आई वॉज टेलिंग हर, जब मैं आपसे बात करती हूँ घर जाके मम्मी को बताती हूँ, एंड शी सेड, रोशी तुझे एक बात बताऊँ, जब ब्रिज बनता है ना, तो ब्रिज के जो भी वो पत्थर इकट्ठे जोड़ के ब्रिज बनाते हैं, उन पत्थरों के बीच में वो हल्की सी जगह छोड़ते हैं. आई वाज लाइक, अच्छा मम्मा क्यों करते हैं वो ऐसे? ऑल दो ब्रिज के जो भी वो पत्थर इकट्ठे जोड़ के ब्रिज बनाते हैं, उन पत्थरों के बीच में वो हल्की सी जगह छोड़ते हैं. आई वाज लाइक, अच्छा मम्मा क्यों करते हैं वो ऐसे? ऑल दो

रिलेशनशिप को हेल्प करती है टू ग्रो, नॉट इन ब्रिंगिंग इट डाउन. एंड काफी डीप आइडियोलॉजी थी मेरी मम्मी की अबाउट दिस ब्रिज वाला एनालॉजी दैट शी गेव मी. आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट. आप सोचो इसके बारे में एंड टेल मी व्हाट यू थिंक. डू यू थिंक एक रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पेस एक्चुअली इज वेरी हेल्दी, येस और नो? एंड गिव मी द आंसर. व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. लेकिन

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने सेलिब्रिटीज की पूरी एल्बम बना कर रखी है, लेकिन द फन थिंग इज कि जब भी आपको नॉटी होना होता है आप उन सेलेब्स की एल्बम्स को रेफर करते हो. OMG,
0: द सीक्रेट बॉक्स.
1: ऐसे ही अमेजिंग सीक्रेट्स बताने के लिए व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय रोशी,
1: कैसे हो आप?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आपने मुझे जब अपना कन्फेशन लिखकर बताया ऑन इंस्टाग्राम, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड, क्योंकि ऐसा कन्फेशन मैंने बहुत सालों में नहीं सुना है. तो एक्चुअली आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है? व्हाट इज दैट कन्फेशन?
2: यार रोशी क्या बताऊँ यार, तेरे को पता है कि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती हूँ, जैसे सबका होता है कि मतलब अलग अलग तरीका होता है टर्न आउट होने का, लेकिन मेरा ये है कि मेरे को जब तक गढ़वाली या पहाड़ी गाना नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं टर्न ऑन नहीं हो सकती बिल्कुल भी.
1: सीरियसली?
2: इवन मैं तो कितनी बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब बीच बीच में भी मैं गाने भी लग जाती हूँ.
1: ओके, वन सेकंड. तो आप बेसिकली हो कहाँ से? क्या आप इंडिया के, लाइक आर यू फ्रॉम इंडिया? कौन से कोने से हो इंडिया के?
2: मैं इंडिया के मतलब गाजियाबाद में रहती हूँ.
1: हाँ.
2: उत्तर प्रदेश के अंदर आती है.
1: हाँ. तो फिर ये पहाड़ी गानों का शौक कहाँ से लगा आपको?
2: क्योंकि मेरा होम टाउन, मतलब मैं उत्तराखंड से ही हूँ, होम टाउन मेरा उत्तराखंड ही है. वो होता है ना एक अलग सी वाइब.
1: हाँ,
2: मतलब
1: हाँ,
2: वैसी वाइब मेरे को गढ़वाली सॉन्ग ही दे सकते हैं, ना पंजाबी ना कोई.
1: हाँ,
2: सिर्फ गढ़वाली गाने.
1: तो आप मतलब बीच बीच में गाने भी लग जाते हो, तो मेरे लिए भी गा के सुना दो, मुझे पता चलेगा कि यार मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं.
2: बिल्कुल गा सकती हूँ. बेड़पा को बारमासा, बेड़पा को बारमासा. और भी गा के सुनाओ.
1: नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है?
2: इसका मतलब होता है कि मतलब हमारा एक वो होता है ट्री है.
1: हाँ.
2: वो 12 मतलब मंथ्स में.
1: हाँ.
2: 12 मंथ्स में उसमें फ्रूट होते हैं. हाँ. ये होता है इसका मतलब.
1: बट यू नो लाइक आई डोंट गेट वॉट योर वाइब इज, क्योंकि मैं जब स्पेनिश गाने सुनती हूँ एंड आई गेट इन द मूड, मुझे पता भी नहीं होता उन स्पेनिश गानों का मतलब क्या होता है. बट आई रियली लाइक द फैक्ट दैट आपने मुझे फोन करके बताया कि यार रोशी लाइक गढ़वाली सॉन्ग्स रियली डू इट फॉर मी. अपनी तरफ से क्या मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ?
2: बिल्कुल,
1: ये लीजिए. आई मीन मैं ये गढ़वाली किसी भी लाइक मेलोडी में नहीं कर रही हूँ, बट
3: यू've been रोशिफाइड.
1: कभी मैं आपके बॉयफ्रेंड से बात करना चाहूंगी एक बार.
2: हाँ जी, बिल्कुल.
1: इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई वैको कन्फेशन है, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.

0: Taj Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखे, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूँ। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स, ओडिसी एक बार अवश्य देखिए और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरी कजन इतनी खुराफाती है ना, जस्ट बिकॉज उसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया, वो चाहती थी कि मैं सिंगल से डबल हो जाऊं, एंड शी हुक्ड अप अ डेट फॉर मी, और फॉर अ चेंज मैं उस डेट पर चली गई बिकॉज शी सेड कि यार बहुत सही बंदा है, और अगर कुछ नहीं भी होता तुम दोनों के बीच में दोस्त तो बन ही सकते हो, और दोस्ती को मैं कभी मना नहीं करती हूँ. एंड व्हेन आई मेट दिस गाय, वो डेट इतनी ब्यूटीफुल थी. आपको पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए पहले तो फूल लेकर आया, विच आई फील इज सच अ शिवलरस ओल्ड फैशन थिंग टू डू, लेकिन ओल्ड फैशन कई बार आउट ऑफ फैशन होता ही नहीं है. और उसके बाद ऑल थ्रू आर डेट ना, जब भी मैं कहीं बैठने लगती थी, ही यूज्ड टू पुल आउट द चेयर फॉर मी. जब हम कहीं रेस्टोरेंट में एंटर कर रहे होते थे तो वो मेरे लिए दरवाजा खोल रहा था. एंड आई रियलाइज कि यार हैं तो ये पुरानी चीजें, और हम ये कहते हैं कि हम सब इक्वल हैं, खुद का दरवाजा खुद खोल लेंगे, खुद की कुर्सी खुद पुल आउट कर लेंगे, वी डोंट नीड मेन टू डू इट. बट जब वो ऐसे शिवलरस जेस्चर्स कर रहा था ना, आई रियलाइज दैट आई एक्चुअली रियली लाइक्ड इट. और अब मुझे नहीं पता कि हमारी डेट का क्या फ्यूचर है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू मीट दिस गाय अगेन. ही वॉज फनी, बट फनी से ज्यादा ही वॉज वेरी प्रॉपर, और वो बहुत सेंसिटिव था अबाउट माई वॉट आई वॉन्टेड, वेयर आई वॉज सिटिंग. मुझे ठंड तो नहीं लग रही है, मुझे भूख तो नहीं लग रही है. एंड आई जेन्युइनली थिंक कि हम जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाए ना, टेक्नोलॉजिकली या अदरवाइज, कुछ चीजें हैं जो ओल्ड फैशन अच्छी लगती हैं. अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए कुछ ओल्ड फैशन काइंड ऑफ लविंग बहुत समय से नहीं किया है, आई सजेस्ट यू ट्राई डूइंग दैट, एंड देन वॉच हाउ योर रिलेशनशिप बिकम्स मैजिकल. बिकॉज कई बार ऐसे छोटे छोटे जेस्चर्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर रिलेशनशिप, और इसे ट्राई करके वंस इट वर्क्स फॉर यू ना, मुझे थैंक यू कहना मत भूलना. एंड फॉर दैट यू कैन फाइंड मी इंस्टा पर या FB पर. एंड द ट्रूथ इज, जिसके पास लव है ना, उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोथ.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भाई हमेशा करते ही हैं, कोई शराब ला रहा है, कोई कबाब ला रहा है, हमारे सामने कहा भाई हारमोनियम लगाओ भाई गाना वाना गाएगी। हमने गाना वाना गा दिया साहब। वो दो साहिबान अगले दिन मेरे घर पे आए, बस सारी रात गाना बजाना होता रहा। अगले दिन वो सवेरे हमारे वालिद साहब से मिलने चले आए, कहने लगे साहब आपके साहेबजादे में बड़ी टैलेंट है, तो बहुत अच्छा गाना गाना जानते हैं। हमारे फादर को तो पता ही नहीं था गाना किसे कहते हैं, ना हमें पता था, मैट्रिक में पढ़ा करते थे। फादर बड़े ताज्जुब हो गए, कहने क्या कह रहे हैं, क्या कौन है, कौन लोग हैं ये।
1: इसके आगे क्या हुआ आगे सुनेंगे ना, राइट है पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: देश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कभी कभी मेरे दिल।
0: मुकेश स्पेशल, चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
4: सावन का महीना पवन करे शोर।

0: मुकेश चंद माथुर यानी कि सिंगर मुकेश जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये 15-16 साल के थे जब दिल्ली में अपनी बहन की शादी में गाने वाने गा रहे थे, तब दो फिल्मी लोगों ने इनको नोटिस किया। इन फिल्मी लोगों में से एक थे तब के जाने माने एक्टर मोतीलाल जी। ये दो लोग इनके घर पहुंचे इनसे और इनके फादर से मिलने, तो फादर साहब ने बोला भाई कौन है ये लोग, क्यों आ गए हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ शेयर किया था मुकेश जी ने एक मीडिया चैनल से एक बहुत पुराने इंटरव्यू में, तो सुनिए आगे की स्टोरी।
1: फादर बड़े ताज्जुब हो गए, कहले क्या कह रहे हैं, क्या कौन है ये, कौन लोग हैं ये। मैंने कहा जी ये बड़े फिल्म के बहुत बड़े मशहूर आदमी हैं, इन लोगों को मशहूर वशहूर तो होंगे, ये क्या चाहते हैं तुमसे। तो उन्होंने कहा कि जी इन्हें फिल्म में भेज दीजिए, सैगल से भी बड़ा नाम कमाएंगे। तो सैगल ये नाम था जो हमारे फादर ने सुना था, तो किसी को जानते जमानते नहीं। तो खैर साहब वो उस वक्त तो उस चीज पर समझ नहीं हुए, वो फादर ने कहा कि नहीं भाई हम तो क्लर्क बनवा देंगे अपने लड़के को। तो था वो ऐसा कि नेशनल स्टूडियो के अंदर नलिनी जयवंत को इन्होंने हीरोइन लिया था, उसके लिए नए लड़के की तलाश थी उन्हें, वो चाहते थे कोई सिंगिंग हीरो आए। मगर खैर उस टाइम तो नहीं, नेक्स्ट टाइम जब उसकी सेकंड पिक्चर नलिनी की स्टार्ट हुई जिसका नाम था निर्दोष, दोबारा उन लोगों ने एक टेलीग्राम मुझे दिया मेरे फादर को। मेरे फादर कहने लगे कि भाई अगर इतना वो लोग इसरार कर रहे हैं तो वाकई शायद है तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट हो, जाओ अपना मुकद्दर आजमा लो।
0: और इसके बाद साहब बॉम्बे पहुंच गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: देश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
0: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: कभी कभी मेरे दिल।
0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: The iconic singer Mukesh Ji, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये 16-17 साल के होंगे 1939-40 में जब बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि दिल्ली में एक शादी में इनके लुक्स और सिंगिंग टैलेंट को नोटिस किया था तब के जाने माने एक्टर मोतीलाल जी ने। खैर ये बॉम्बे आए, एक फिल्म में काम भी किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में एक मीडिया चैनल से उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: खैर साहब हम आए, पिक्चर हो गई फेल, हमें निकाल दिया गया, कंपनी भी बंद हो गई। पहले तो हमने कुछ दिनों कुछ कभी शेयर ब्रोकर बने, कभी वो ड्राई फ्रूट सेलर बने, कभी कुछ बने, सारे दुनिया भर के धंधे करके। वो कहते हैं ना जी कि जब मुकद्दर में कुछ लिखवा के लाए हो तो कुछ ना कुछ भगवान ने ऐसा तरीका निकाल दिया कि प्लेबैक सिंगिंग का प्रोफेशन शुरू हो गया और हमारी कुछ थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई वहाँ पे।
0: वेल, इनसे ये भी पूछा गया कि एक्टिंग में इन्होंने करियर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की।
1: मैंने कोशिश करी थी जी, मगर इतना नाकामयाब रहा। दो डिफरेंट आर्ट हैं और मैंने सोचा कि इट इज बेटर टू बी अ फर्स्ट क्लास सिंगर देन टू बी अ सेकंड क्लास एक्टर।
0: क्या ही लाइवली हंसमुख थे यार ये। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई जो एक ग्रीक
3: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
2: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूँ। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स ओडिसी। एक बार अवश्य देखें, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: दीवाना।
1: सिंगर मुकेश का पहला गाना जो हिट हुआ था वो था 1945 की फिल्म पहली नजर का गाना, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये गाना ऑलमोस्ट फिल्म से निकाला जाने वाला था। इसकी एक स्टोरी एक जाने माने मीडिया चैनल से बहुत पुराने इंटरव्यू में मुकेश जी ने शेयर की थी, सुनिए।
2: जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया तो पिक्चर कंप्लीट होने के बाद ये तय किया गया कि उसमें से ये गाना निकाल दिया जाए। तो हम मजहर खान साहब के पास गए जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर थे, और हमने उनसे पूछा कि भाई ये गाना इसमें से क्यों निकाल दिया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं भाई बात ये है कि मोतीलाल जो हैं ये अक्सर चंचल किस्म के करेक्टर करते हैं और इनके करेक्टर को ये सैड सॉन्ग सूट नहीं होता है। हमारा बड़ा दिल टूट गया, हम बड़े उदास हुए। हमने उनसे कहा मजहर भाई कि आप ये गाना रहने दीजिए। कहने भाई ये चलेगा नहीं, ये बड़ा बोर करता है ये गाना और ये पिक्चर के अंदर ड्रैग करता है। तो खैर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस चीज के ऊपर वो एग्री किया कि भाई हम एक वीक रखेंगे और अगर पब्लिक को गाना पसंद आया तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसे पिक्चर में से निकालेंगे।
1: Well, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी सुनते हैं मुकेश जी की आवाज में एक और उनका सुपरहिट गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: सिंगर मुकेश जी और उनकी वाइफ सरला की लव स्टोरी। फिर से सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने एक बार एक इंटरव्यू में शेयर की थी, सुनिए।
1: मेरी माँ गुजरात की थी, गुजराती थी, श्रीमाली ब्राह्मण थी और पापा माथुर कायस्थ। उनकी पैदाइश दिल्ली की थी, माँ की बड़ौदा की थी, वडोदरा की थी। मिले दोनों बॉम्बे में। 1946 में उनका प्रेम विवाह हुआ और प्रेम विवाह ऐसा माँ के परिवार ने तो एकदम बिल्कुल ही नहीं स्वीकारा। एक नॉन वेजिटेरियन खाने वाला, फिल्म में गाने वाला, सेटल नहीं हुआ है आदमी, हम ऐसे लड़के को अपनी बेटी दे ही नहीं सकते। मोतीलाल जी एक्टर जो थे, उन्होंने पापा की मदद की और पापा ने भागकर शादी की मेरी माँ से। कन्यादान मोतीलाल जी ने दिया, माँ के परिवार में से कोई मौजूद नहीं था, मगर पापा ने कभी उस बात की गिला या शिकवा नहीं रखा मन में। बहुत एक खूबसूरत प्रेम विवाह रहा उनका।
0: भाई ये तो फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी लव स्टोरी है। और अभी हम सुनेंगे वो गाना जो अक्सर मुकेश जी सरला जी के लिए गाते थे, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा ओनली ऑन 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Mukesh ke gaane aur unki baatein. Charu ke saath purani jeans par. Only on Mirchi.

0: मुकेश जी और राज कपूर जी की दोस्ती। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बारे में मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश जी ने एक बार एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था, सुनिए।
1: बहुत ज्यादा आत्मीयता, एक दूसरे की कला के लिए इतनी इज्जत और एक दूसरे के लिए अटूट प्यार। राज अंकल ने पापा का साथ कभी नहीं छोड़ा। दोनों की आवाज ऐसी मिलती थी, जब आपस में बात करते थे तो ये नहीं कह सकते थे कि ये राज अंकल बात कर रहे हैं या पापा बात कर रहे हैं। कुछ अच्छी चीज सुनी, कुछ अच्छी चीज की कल्पना की, सीधे मुकेश चंद के पास। और हमारा एक छोटा सा दो कमरे का घर था, उसमें एकदम बड़ी सी हवाई जहाज जैसी इम्पाला चली आती थी उनकी। सारे मोहल्ले में ये हो जाता था कि राज कपूर आए। मगर उन्हें बिल्कुल भी सादगी से वो चले आते थे जमीन पे गद्दे आकर। मुकेश चंद, मुझे ये धुन ऐसी अच्छी लगी है, तो सबसे पहले वो दौड़े हुए पापा के पास आते थे।
0: वाओ, वेल नो डाउट, जब मुकेश जी गए तो राज कपूर जी ने कहा कि मैंने अपनी आवाज खो दी है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कभी कभी मेरे दिल।
0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: मुकेश जी के गाने सुनो तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड रहे होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। बिल्कुल ऐसा ही शेयर किया था एक इंटरव्यू में उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने, सुनिए।
1: वो इतने नरम दिल के इंसान थे, इतने भावुक थे, इतने कंपैशनेट थे। मैं कॉलेज में जब आया तो मैं देखता था कि मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ियां थी, तो मैंने एक दिन मेरी माँ से फरमाइश की मुझे भी गाड़ी चाहिए। माँ ने पापा से कहा, सुनिए नितिन बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा है, उसको गाड़ी की जरूरत है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, करके गाड़ी की चाबी दी। और मैं बेफिक्री से और बेख्याली से कि गाड़ी तो एक ही है, मगर मैं काफी दिनों तक गाड़ी में घूमता रहा, दोस्तों को घुमाता रहा। एक दिन मैं अपने घर से निकला तो मैंने देखा कि बस स्टॉप पे पापा खड़े थे। उस दिन मैं वापस घर आया, माफ कीजिए मुझे, आज भी मैं वो बात याद करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही। मुझे हंसकर प्यार से बोले, पागल गाड़ी मैं चलाऊं या तू चलाए, एक ही बात है।
0: ओह दैट इज सो अडोरेबल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: मुकेश जी के उनके कंटेम्पररी सिंगर्स मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार जी, लता जी, उनके साथ किस तरह के रिलेशनशिप थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने क्या शेयर किया था।
1: मैं ताज्जुब करता था जब मुकेश जी फोन उठाकर रफी साहब को कहते, रफी मियां, तुमने ये गीत इतना खूबसूरत गाया है, काश मैं ये गीत तुम्हारी तरह गा सकता, काश मुझे ऐसा गीत मिलता। रफी साहब का फोन आ रहा है, मन्ना दा का फोन आ रहा है, मुकेश तुमने कितना खूबसूरत ये गीत गाया है। आपस में एक दूसरे के लिए इज्जत, ये भावना नहीं थी राइवलरी की, ये था कि देखो उसने इतना अच्छा गाया है, मैं क्यों ना उस जैसा गाऊं। मैं पापा के संग स्टेज पे गाता था तो हमेशा मुझे कहते थे, बेटा मेरे खुद के गीत गाने के लिए तो मैं खुद हूँ ही, तू रफी साहब के गाने गा, रफी साहब का ये गीत कितना खूबसूरत है, कितना लोकप्रिय है, तू किशोरदा का ये गाना गा। मुकेश जी रफी साहब को, किशोरदा को, महेंद्र कपूर साहब को, मन्ना दा को, और सबसे ज्यादा किसी को चाहते थे तो लता जी को।
0: वाओ, तो इसी जोड़ी का ये ब्यूटीफुल सुपरहिट गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: देश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: भाई अक्सर सिंगर से पूछा जाए कि उनका फेवरेट गाना कौन सा है तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन मुकेश जी ऐसा नहीं करते थे, वो बहुत क्लियर थे। एक बार उनसे एक पुराने इंटरव्यू में, एक मीडिया चैनल के एक इंटरव्यू में, उनसे जब कहा गया कि उनके पॉपुलर गानों में से उनका फेवरेट गाना सुनाए, तो सुनिए।
1: पॉपुलर वॉपुलर तो नहीं जी, मैं आपको एक अच्छा गाना जो मुझे मेरे दिल को पसंद है वो मैं आपको सुनाए देता हूँ। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।
0: और आपके लिए फिलहाल ये गाना, जिसके लिए मुकेश जी को नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म का नाम रजनीकांत था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर्स मुकेश जी. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. एक बार एक बहुत पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि कई बार जब वो गाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्या उनको ऐसा लग जाता है कि ये गाना अच्छा नहीं है या हिट नहीं होगा. क्या उनको ऐसी लिबर्टीज मिलती थी पहले के जमाने में कि वो गाने में कुछ चेंजेस फेर बदल कर पाए. सुनिए उन्होंने क्या कहा था.
1: फेर बदल तो हम नहीं कर पाते जी, क्योंकि वो तो एक म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता है और उनकी बंदिश होती है. मगर हाँ, कुछ थोड़ा सा एक इंट्यूशन जरूर हो जाती है कि ये गाना नहीं चलेगा.
0: और गाना पसंद नहीं होता था तो भी गा देते थे.
1: हाँ जी, पेट है.
0: इतने जोवियल लाइवली हसमुख मुकेश जी, इनको पर्सनली सैड सॉन्ग्स गाना पसंद था. सुनिए एक बार उन्होंने क्या शेयर किया था.
1: अगर मुझे 10 लाइट गाने मिले और एक सैड सॉन्ग मिले तो मैं 10 गाने छोड़ के वो गाने के लिए एक सैड सॉन्ग गाने.
0: वेल, यहाँ पे हम वो गाना सुन लेते हैं जो थोड़ा फिलोसॉफिकल थॉटफुल सा है. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची.
2: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: देश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: कभी कभी मेरे
0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: भाई फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखे जाना थोड़ा लेट शुरू हुआ था। 1940s या कुछ हद तक अर्ली 50s की भी बात करें तो गाने बस बना दिए जाते थे, रिकॉर्ड कर लिए जाते थे। वो फिल्म में लिए जाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। सिंगर्स जब गाने गा रहे होते थे उनको पता भी नहीं होता था किस सिचुएशन के लिए गाना यूज होगा नहीं होगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में जब आइकॉनिक सिंगर मुकेश जी से पूछा गया था तो सुनिए उनका क्या जवाब था।
1: अक्सर तो ये होता है जी कि ना डायरेक्टर होता जब हमारी रिकॉर्डिंग होती है और ना प्रोड्यूसर होता, और अगर दोनों होते हैं तो उन्हें पता नहीं होती कि सिचुएशन क्या है। मगर खैर कुछ सीरियस फिल्म मेकिंग अब शुरू हो गई है और लोग आते हैं, वो सिचुएशन भी बताते हैं, और जब सिचुएशन बताते हैं तो ज़रूर उसमें कलाकार उस सिचुएशन को सामने रख के उसमें खो के और उसके उसको गाने को उस किस्म से रेंडरिंग करता है।
0: वेल ऑनेस्ट सीधे सादे मासूम से मुकेश जी, बिल्कुल अपने गानों के जैसे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई जो एक ग्रीक
3: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
2: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स ओडिसी। एक बार अवश्य देखें, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
0: मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जीन्स पर, ओनली ऑन मिर्ची।

सिंगर मुकेश जी की जब डेथ हुई 1976 में, तो वो यूएस गए हुए थे एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, उनका वन ऑफ द लास्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग्स उसके बोल क्या थे। वेल, उनके एक और शो से, एक और प्रोग्राम से ये गाना जब वो लाइव गा रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं।

ब्यूटिफुल एंड गूज़बम्प्स। तो ये गाना सुन लेते हैं 1975 की धर्म करम मूवी का। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: देश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची के
1: साथ, 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूँ। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स। ओडिसी एक बार अवश्य देखें, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
3: FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: इस हरकत ने ही बरकत दी है क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या गंडा लेकर जाएगा?
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: आर के जूल्स
1: मंगल आरती,
0: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हर सिचुएशन में काम रहना अच्छी बात है या कभी कभी ये इनएफिशिएंसी का कारण भी बन सकती है, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, जब आप ऐसा चॉइस दे देती हैं तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आसान भी लगता है, लेकिन अब इसको रियल लाइफ में लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर है, घर पे एक हेड ऑफ द फैमिली है, जो भी है, और उनको ये टफ डिसीजंस बीच बीच में लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो चॉइस लेते हैं कि भैया मैं ये नहीं लूंगा डिसीजंस, मैं काम रहूंगा और हो सकता रिजल्ट ना आए, तो वो तो इनएफिशिएंट हो गए ना, वो अपना काम नहीं कर पा रहे।
4: टफ डिसीजंस लेने के बाद भी, पहले तो टफ डिसीजन लेने में कोई हर्जा ही नहीं है और टफ कॉन्वर्सेशन करने में भी कोई हर्जा नहीं है। हम तो सिर्फ जो बात कर रहे थे वो अंदर की स्टेबिलिटी की है कि आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, अपने लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे हैं और बाहर किसी को रेडिएट नहीं कर रहे हैं। उतनी सी बात है कि अंदर अपना ध्यान रखते हुए बाहर जो करना है कर रहे हैं। बाहर करने के बाद भी हमेशा जरूरी नहीं है कि काम हो जाता है। गुस्सा करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हो जाता है।
3: दोनों केसेस में हो सकता ना हो।
4: दोनों केसेस में हो सकता है कि ना हो। ऐसा तो नहीं है कि जो गुस्सा करते हैं उनका हर काम हो जाता है, ऐसा कोई भी आपको मिला है
3: हो जाता है,
4: ऐसा तो जरूरी नहीं है। ये भी एक हमारा मिथ है, ये भी मिथ है कि जो करता है वो ज्यादातर हो जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। देन अगेन लाइक आई सेड, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द होल आइडिया हियर वी आर डिसाइडिंग इज गुस्से को नॉर्मलाइज करना है कि नहीं। सी, जब आप गुस्से को नॉर्मलाइज कर देते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप उसको राइटियस कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, इट इज रेडिएटिंग नेगेटिव एनर्जी। फिर आपको एक और चीज को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, वो है एनवायरमेंट के अंदर हर्ट लोग, एनवायरमेंट में ऐसे लोग जो रिजेक्टेड हैं, ह्यूमिलिएटेड हैं। क्योंकि नेचुरल सी बात है ना कि अगर नेगेटिव एनर्जी रेडिएट होगी तो एनवायरमेंट इतना लाइट रह ही नहीं सकता।
3: तो एक अच्छा सोल बनने के लिए आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हो सकता है मैं एक इफेक्टिव लीडर, इफेक्टिव घर पे परिवार में हेड ऑफ द फैमिली जरूरी नहीं कि बन पाऊं मैं।
4: जो मेरा अनुभव कहता है कि जहां तक हम लोगों की बात करते हैं तो हर व्यक्ति को एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट चाहिए।
3: जी,
4: लेटली आई मेट समबडी, He's the brigadier of the very big troop. उनके नीचे 3,000 लोग हैं, 70 officers हैं, and he came up to me and he said, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। बाकी और जो हैं उसी लेवल पर वो करते हैं और उनको ठीक लगता है। तो मैंने एक बार ये अपनी टीम को पूछा कि आपको मेरे से तो बिल्कुल डर नहीं लगता होगा। तो उन्हीं की टीम में से एक लेफ्टिनेंट ने कहा, सर हमें बहुत डर लगता है, हमें इस चीज का डर लगता है क्योंकि आप हमें इतनी डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं। तो हम कभी में से एक लेफ्टिनेंट ने कहा, सर हमें बहुत डर लगता है, हमें इस चीज का डर लगता है क्योंकि आप हमें इतनी डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं, तो हम कभी भी आप

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: क्या सिर्फ पद या औहदे की वजह से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना सही है? आइए समझें.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
4: सिस्टर, आपने कई बार जब हम गुस्से की बात करते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस का एग्जांपल लिया, और ये बहुत कमाल की बात है. मुझे बहुत रिस्पेक्ट है आर्म्ड फोर्सेस की, क्योंकि वो बहुत एक सैक्रिफाइस वाली जिंदगी भी जीते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं. मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, इसलिए वो पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि उनके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है और वो सालों तक ट्रेन करते हैं, और उनका एक तरह का लेयर्ड जो होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो ब्रिगेडियर के लिए या जितने भी अलग अलग ओहदे हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो बाकी जो टीम है वो उनको उस ओहदे के लिए भी रिस्पेक्ट करे. आप एक कांस्टेबल हैं तो शायद सब इंस्पेक्टर के सामने आप ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे. एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग कि यही ओहदे हैं. तो वहां पे क्योंकि ये डिसिप्लिन्ड तरीके से आपको चलना पड़ता है, शायद जो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं जो घर पे होता है, परिवार में होता है, रस्ते पे होता है, ऑफिस में होता है, वो जरूरी नहीं कि वहाँ लागू हो.
5: नहीं, ये चीज हर जगह लागू होती है क्योंकि हायरार्की हर जगह है. आप जो कह रहे हैं कि हायरार्की में सामने वाला कुछ बोल नहीं पाए
4: जी,
5: तो वो या तो कहीं सप्रेस कर लेता है, कहीं एक्सप्रेस करता है
4: जी.
5: घर में भी मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ है, अगर वो नहीं बोल सकते तो सप्रेस करेंगे. ऑफिस के अंदर भी कई जगह पर हायरार्की है, आप के सामने बॉस खड़ा है तो आप नहीं बोलेंगे
4: जी.
5: तो वो एक हायरार्की का स्ट्रक्चर तो आपको मेजॉरिटी हर जगह मिलेगा.
4: घर पे नहीं होता ना. घर पे हायरार्की अगर है भी तो पापा के साथ, मम्मी के साथ, दादा दादी के साथ ज्यादातर आप बोल पाते हैं.
5: इसीलिए घर में गुस्सा काम नहीं करता. बाकी सब जगह फिर भी कर जाएगा
4: जी,
5: लेकिन घर में वो बहुत ही कम समय के लिए करेगा. बिकॉज घर में वो हायरार्की है ही नहीं. तो आप थोड़ा समय जब बहुत छोटे हैं, जब फिजिकली वीक हैं, तो आप अपना कंट्रोल यूज कर सकते हैं. द मोमेंट दे बिकम फिजिकली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्ट्रांग, आप कितना भी बोलते रहो. एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. जो लोग पूरी पूरी कंपनी चला लेते हैं, नीचे हजारों लोगों को चला लेते हैं, उनके घर में रिश्ते कई बार ठीक नहीं होते. क्योंकि घर में वो हायरार्की काम ही नहीं करेगी. घर में जो काम करेगा वो है लव एंड रिस्पेक्ट.
4: तो घर की मुर्गी दाल बराबर हमेशा.
5: घर की मुर्गी दाल बराबर इसलिए कहते हैं कि घर से पता चल जाता है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं. क्योंकि बाहर जैसे आपने कहा रोल है, रोल के साथ कुछ पावर भी आ जाती है, उससे कुछ मिलता हुआ रिगार्ड भी आता है.
4: सही बात है.
5: वो आपको रिगार्ड देंगे, आपके पास पावर है उनको कंट्रोल करने की. ये दोनों चीजें घर में चली जाती है. ना वहाँ पर आपको कोई पावर है और ना ही उनको आपको रिगार्ड देने के लिए वो बंधे हुए हैं. वहाँ जो चीज काम आती है वो है आपकी एनर्जी
4: जी.
5: आपकी क्या एनर्जी है, कैसा रिश्ता है, क्या वेवलेंथ है, उस अनुसार वो लोग चलते हैं.
4: वेरी नाइस.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब प्यार और समझाने से बात ना बने तो क्या प्रोफेशनल लाइफ में गुस्सा दिखाना सही लीडरशिप है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, में एक सवाल आता है मेरे दिमाग में, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कई बार क्या होता है, एक मीटिंग हो रही है और उस पर मैंने बहुत जोर से गुस्सा किया किसी पे, क्योंकि प्यार से समझाने से वो काम हो नहीं रहा था, और काफी देर समझाने के बाद जब मैंने गुस्सा किया वो काम भी हो गया, और बाद में मैं उस बंदे के साथ डिनर पे भी गया, आराम से बात भी किया, एंड वी वर ऑल ओके। ऐसी सिचुएशन में ये गुस्सा करना जहां मैं चिल्लाया वो सही है या नहीं?
4: कभी भी गुस्सा सही नहीं होता। लेकिन आपने जो एक स्टेप सही किया वो ये था कि जब आपको रियलाइज हुआ कि आपके गलत कर्म से कोई हर्ट हुआ है
3: जी,
4: तो आपने जाकर के अपोलोजाइज किया
3: जी।
4: वो जो आपकी ह्यूमिलिटी थी उससे सब कुछ ठीक हो गया। अगर आप वो ह्यूमिलिटी नहीं रखते और आप कहते मैं तो बॉस हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को तो झुकने की जरूरत नहीं है, तो वो जो व्यक्ति हर्ट है वो आपके बारे में कुछ सोचता कि नहीं सोचता? तो काम आपका हो गया था, लेकिन फिर वो जो सोचता या 10 लोगों से आपकी बात करता वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती।
3: तो इस माइनस को मैंने 0 इसलिए कर दिया क्योंकि अपोलोजाइज कर दिया। अगर अपोलोजाइज नहीं करता तो शायद वो नेगेटिव इमोशन में रहता और 10 लोगों को मेरे बारे में गलत बता के मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजता।
4: एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो आप दो चीजें साथ साथ जीवन में चल रही है, जब काम हो रहा है तो धन आ रहा है, धन आ रहा है तो मटेरियलिस्टिक लेवल पर हम बढ़ रहे हैं।
3: सही बात है,
4: हमारा घर बन रहा है, गाड़ी बन रहा है, लाइफ कंफर्टेबल हो रही
3: लेकिन
4: है,
3: इंटरनली नहीं।
4: पर जो हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। मेरे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं और दूसरों के मन में मेरे लिए क्या थॉट्स चल रहे हैं।
3: तो फिर तो हर बार मैं गुस्सा करके अपोलोजाइज कर लूं, ठीक है?
4: जरूरी तो नहीं है वो हर बार ठीक हो जाएंगे।
3: तो ये बहुत जरूरी है कि वो बुरा अगर मानता है और वो अगर ठीक नहीं होता, मेरी अपोलोजी एक्सेप्ट नहीं करता, तो प्रॉब्लम है।
4: वो नहीं करेंगे एक टाइम के बाद,
3: क्योंकि उनको लगे है तो इनका रोज का है,
4: ये इनका रोज का है, दे विल आल्सो गेट यूज्ड टू इट ना। ये तो फर्स्ट टाइम कभी है और सामने वाला जेन्युइनली उसको रियलाइज करता है तो द अदर पर्सन आल्सो फील्स इट इज ओके, एंड देन आल्सो समटाइम्स बाहर से वो इट इज ओके करता है, अंदर से वो कितनी जल्दी हील होगा वो डिपेंड करेगा वो कितना इमोशनली स्ट्रांग है। बाहर से आई कैन से इट इज ओके, वी ऑल ट्राई टू यू नो प्ले अ पार्ट। अब आप अगर अपोलोजाइज कर रहे हैं तो मैं यही बोलूंगी इट इज ओके, बट इफ आई एम इमोशनली वीक वो चीज मेरे मन में चलती रहेंगी, आई विल शेयर इट विद 10 अदर पीपल, वो अक्यूमुलेटेड नेगेटिव एनर्जी आपके पास ही जाएंगी। इसलिए आप देखिए, बहुत लोग हैं बहुत काम करा लेते हैं, जीवन में सफल ही उनको माना जाता है, पर अंदर में वो एक खालीपन एक्सपीरियंस करते हैं, अंदर में खालीपन, अकेलापन, टायर्ड एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी जो वो अपनी तरफ इनवाइट करते हैं।
3: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब आपकी मेहनत का क्रेडिट किसी और को मिल जाए तो इस सिचुएशन को इमोशनली कैसे हैंडल करें, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हाल फिलहाल में फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म हुआ और मैं जब सुबह उठ के देख रहा था, एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि इमेजिन करिए कि गोल होता है, लाखों लोग आपका नाम चिल्लाते हैं, लेकिन जिसने बॉल पास किया ना उसका स्कोरबोर्ड पे भी नाम नहीं है। तो वो जो एक नाम जो सब चिल्ला रहे हैं, चाहे वो हालैंड था या मेसी हो या रोनाल्डो हो, कई सारे नाम आए, उनके बारे में इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि उन्होंने गोल किया, लेकिन जिन्होंने उनको बॉल पास किया, जिन्होंने असिस्ट किया, उनका नाम कोई नहीं जानता और कोई जानना भी नहीं चाहता। अब मैं फुटबॉल से ऑफिस में आता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट सेटअप किया है लेकिन फाइनली किसी मैनेजर ने आके उस पर चार पांच फिनिशिंग टचेस किए और फाइनली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, नाम उन्हीं का हुआ, अवार्ड भी उन्हीं को मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तो ऐसे केस में हौसला को जिंदा रखने के लिए मैं खुद को क्या कहूँ?
4: ये हर फील्ड में होता है और इसीलिए उस समय पर हमें अपने को समझाना पड़ता है क्या चीजें हमारे कंट्रोल में, उसमें हमारा कर्म हमारे कंट्रोल में। नाम मान शान, नेम फेम रिस्पेक्ट फल है, वो मिलेगा, किस दिन मिलेगा हमें नहीं पता। हमारा काम है बीज बोना, कर्म कर फल की इच्छा नहीं कर, बिकॉज आउटकम इज नॉट इन माई कंट्रोल। ये जो हमें कई बार लगता है कि सब कुछ मैंने किया लेकिन नाम इसका हो गया, ये सबसे ज्यादा चीज तकलीफ देती है। उस समय पर हम ये रियलाइज नहीं करते कि जो उसका नाम हुआ है ना वो उसका फल है, पर वो फल उसको जो मिला है वो उसने कभी कोई बीज बोया था उसका मिला है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और ना कोई छीन पाया है। तो ये जो मुझे लगता है मेरा छीन लिया ना, वो नहीं छीन सकता है।
5: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रोफेशनल लाइफ में अगर कभी लगे कि मैं रिप्लेस हो सकता हूँ तो अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे मजबूत रखें, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक स्मार्ट बंदा आता है, चार फिनिशिंग टचेस दे देता है और मेरा सारा काम का क्रेडिट ले जाता है, क्योंकि कई बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये भी बोलते हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला जिसके लिए मैंने काम किया, और वो बहुत लोगों को गलत लगता है। आप जो कह रहे हैं कि फल की चिंता मत कर, वो सही है, हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज काम तो मैं ही कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मुझे ऐसा लगने लगेगा कि इस काम का फायदा क्या है, या मैं रिप्लेसेबल हूँ शायद।
4: ये आपको अपने को समझाना पड़ेगा ना, लगने लगेगा क्या, ये व्यर्थ हमारा मन सोचता है। हमें अपने को ये समझाना पड़ेगा कि आज जो ये बीज बो रहे, देखो बीज बोते ही फल तुरंत नहीं आता है, ये चीज की एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है। आप अभी फुटबॉल की बात कर रहे थे, लेटली हमने बहुत सुंदर एग्जांपल देखा, जो एक नई कंट्री थी केप वर्डे का जो गोलकीपर था, एंड ही उसकी बहुत ज्यादा वो जिन्हा देयर वाज टू मच अबाउट हिम। उसकी प्योरली जो स्टोरी थी वो यही थी कि एफर्ट इतने समय का था और अचानक ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट फेम, ओवरनाइट फॉलोअर्स, ओवरनाइट, हमें लगता है ओवरनाइट है
3: जी,
4: हमें लगता है अरे,
3: लेकिन आप कह रहे हैं उसका बीज बहुत पहले उसने बोया होगा।
4: तो बोया ही ना, कहाँ से, 25 से तो प्रोफेशनल खेलना शुरू किया, उससे पहले भी अपने लेवल पर खेलते होंगे, कहीं इलेक्ट्रिशनर था, कहीं कुछ था, वो कभी ऐसे वर्ल्ड क्लब के लिए खेलेंगे वो भी नहीं पता था,
3: बिल्कुल।
4: पर क्योंकि पैशन था, अच्छा लगता था, इंटरेस्ट था, करते करते करते करते किसी दिन उसका रिजल्ट निकला, वो उनको भी नहीं पता था, ही वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर कि ऐसा कुछ होने वाला है। दिस इज समथिंग विच वी कैन सी, चाहे वो 15 साल की कहानी है, 20 साल की कहानी है, बट एवरीबडी उससे इतनी रील्स बनी होगी, एंड द कॉमन टीचिंग वॉज कर्म करते जा, फल की इच्छा नहीं कर, क्योंकि फल तो आना ही है। अब जब वो अचानक आता है तब हम कभी नहीं पूछते कि अचानक क्यों आया।
3: सही बात।
4: ऐसे ही कभी कभी अचानक सक्सेस, अचानक फेलियर होता है, बट इट हैज नथिंग टू डू कि आज किया और कल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कर्मों के लिए हमेशा कहते हैं डीप फिलोसफी ऑफ कर्म, बिकॉज इट कैरीज फॉरवर्ड।
3: तो बचपन से हम सुनते आए हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। चलिए एक नई चीज आपको बता देते हैं जो शायद आपके काम आ जाए, कि नींव जो होती है ना उस पर कभी रोशनी नहीं पड़ती, लेकिन हमें सिर्फ याद रखना है कि पूरी इमारत जो है उसी पे खड़ी होती है।
4: 100%। देखो जब आप बीज भी बोते हैं ना, आपको भी याद होगा स्कूल में भी कभी कभी हम अपना प्लांट खुद लगाते थे, तो आप जब बीज बोते हो और आप पानी देते रहते हो, कुछ होता ही नहीं है, आपकी अर्ज होती है कि मैं खोद करके देखूं वो है भी कि नहीं, पर दैट इज द मोमेंट कि जब सनलाइट, डार्कनेस, वाटर सब कुछ वर्क कर रहा है, लेकिन अंडरग्राउंड कर रहा है।
3: सही बात।
4: वो रूट्स अंदर बन रही है, फिर वो धीरे से निकलता है, फिर दो पत्ते निकलते हैं, उसको भी बहुत संभालना पड़ता है क्योंकि कोमल पत्ते होते हैं, चिड़िया खा जाती है, धीरे धीरे धीरे धीरे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्री बनता है। तो ऐसा नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग ट्री बना तभी जब वो बीज, और जिस समय आपको लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है तब भी बहुत कुछ हो रहा था, तो जिस समय आपको लगता है नाम मान शान नहीं मिला, कुछ नहीं हो रहा है तो भी बहुत कुछ हो रहा है,
3: उसमें रूट्स बन रहे
4: हैं। हाँ, होता तो ऐसे ही है, एक्यूरेट है, इसलिए अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। सी, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप कर्म को एंजॉय करें
3: जी,
4: आप उस गेम को एंजॉय करें, आप प्रोसेस को एंजॉय करें, आप जर्नी को एंजॉय करें। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एंजॉयिंग दैट। हम कब एंजॉय करना चाहते हैं?
3: जब हमें नाम मिल जाए,
4: जब फल निकले, तो वो हमारे हाथ में नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: किड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
3: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
4: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा, तू किस तरह टप आया।
3: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
5: बागी ते आशिक हदां सरहदां टपी आउंदे ने।
3: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
6: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
3: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नूं। फिल्म इश्कनामा।
7: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अगर आपके सपने बड़े हों तो क्या उनके लिए सबकी सहमति जरूरी है? आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हाल फिलहाल में एक बहुत अच्छी ओटीटी सीरीज आई जो टाइटन की पूरी जर्नी है उसके बारे में बात करती है। तो टाइटन जो घड़ी जो बनाने वाले हैं, जिनके दिमाग में आइडिया आया, उनका नाम है जर्गसिस देसाई, उन्हीं पे ये पूरी स्टोरी है और बहुत खूबसूरत स्टोरी है। तो जब मैं ये देख रहा था तो मैंने उसमें देखा कि जर्गसिस देसाई जो है वो किसी की नहीं सुनते थे, वो अपनी मन की चलाते थे, और वो पूरी स्टोरी में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया भी गया है। और आप हमेशा कहती हैं कि कोई भी डिसीजन हो ना, वो सबकी सहमति से होना चाहिए। तो जब एक अकेला जिद्दी सपना हो और फिर है सबकी सहमति, ये दोनों साथ में कैसे चल सकते हैं?
4: नहीं, डिसीजन लेने के लिए सबकी सहमति है ऐसा नहीं है, डिसीजन लेने के बाद सबकी सहमति होनी चाहिए।
3: अच्छा,
4: देखो कभी कभी ऐसे विजनरीज होते हैं, फास्ट साइटेड होते हैं, उनको क्लैरिटी होती है कि ये करना है, ये हर फील्ड में आपको मिलेंगे। उतना विजन और उतनी फास्ट साइटेडनेस जरूरी नहीं है सारी टीम के पास हो।
3: सही बात।
4: लेकिन जब आपको 100% श्योरिटी भी है कि ये जो डिसीजन है वो राइट है, लेकिन धीरे धीरे अपनी टीम को कन्विंस करना, क्योंकि करना तो सबने है ना।
3: सही बात है।
4: उनको भी उस लेवल पर लाना, उनकी भी वो वेवलेंथ बने, आप सब एक एनर्जी में फ्लो करें, वो सफलता के लिए जरूरी होता है। सो एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट इन दैट डिसीजन। वो कभी कभी जरूरी नहीं है, द लीडर कैन टेक द फाइनल डिसीजन, बट वी शुड ट्राई एंड मेक दैट एफर्ट कि सब सेम पेज पर हो, तो वो सफलता इजी हो जाती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
0: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: It's 7:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: गुड़िया पटना से लिखती हैं सिस्टर कि मैं मेरे बेटे को स्कूल जाने और पढ़ाई में मन लगाने के लिए कैसे समझाऊं। दिन भर कमरे में मोबाइल पर गेम्स खेलता है और रील्स देखता रहता है। मैं रोज उसके लिए नाश्ता और लंच तैयार करती हूँ, उसे जगाती हूँ, लेकिन जब वो कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे, लेकिन वो गेमिंग में करियर बनाना चाहता है। उसे पढ़ाई के लिए कैसे समझाऊं या खुद को कैसे संभालूं?
3: अगर करियर तक की बात है तो ऐसा लगता है कि बच्चा बड़ा है और अगर उसके पास ये स्किल है, अभी वो देखना पड़ेगा कि ये एडिक्शन है
2: या स्किल
3: कि है। ये एक स्किल है, क्योंकि गेमिंग में भी जो जा रहे हैं उनके पास स्किल तो है ना। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है, क्योंकि पेरेंट्स हैं, शुभावना होती है, तो वो जब हमारी हॉबीज को देखते हैं तो हमारे कल्चर में कई बार लगता है इसका कोई करियर थोड़ी ना बन सकता है, चाहे वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, स्पोर्ट होगा। बट अगर उस बच्चे के अंदर स्किल है और वो बच्चा उसके अंदर करियर बनाना चाहता है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा फियर लगता है तो बच्चे के साथ बात करके कहना चाहिए कि जैसे क्रिकेट के लिए हम कई बार बात करते हैं, कई पेरेंट्स हमें मिलने आते हैं, हर साल 11 लाख 12 लाख बच्चे होते हैं, पर सिलेक्ट कितने होते हैं उसके अंदर से?
2: बहुत कम।
3: 11 की टीम में से भी कितने तो रिपीटेड प्लेयर्स होते हैं, तो जो एक्चुअली में खेलते हैं वो बहुत कम होते हैं इंडिया के लिए। तो उनका जो फियर है और उनका जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन होता है। तो उसमें एक पेरेंट को कहना कि एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप दिन के 2 घंटे 4 घंटे आपको पढ़ना ही है, आपको डिग्री लेनी है, लेकिन बाकी 6 घंटे अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं सो वी विल सपोर्ट यू। बट वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी करियर में आपको लगता है कि थोड़ा सा अनसर्टन है तो फिर एक ऑप्शन, मतलब सपोर्ट भी करे, वो मेहनत भी करे, पर दूसरा ऑप्शन ओपन भी होना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, विद्युत शाह का एक सवाल है कि क्या स्पिरिचुअलिटी हमारी असक्षमताओं को और असफलताओं को छुपाने का इजी तरीका है?
3: एब्सोल्युटली नॉट। उनको एक्सेप्ट करने का तरीका है और एक्सेप्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है।
2: तो एक्चुअली हमको सक्षम बनाने का तरीका है और सफल बनाने का तरीका है
3: स्पिरिचुअलिटी। आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है। तो फिर जो आपको करना है वो आप कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ कर नहीं पाते तो हमें लगता है हम फेलियर है। हम फेलियर नहीं होते। आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट इनएफिशिएंट, और इट इज जस्ट आई हैव नॉट टेकन आउट दैट टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है।
2: आई डोंट नो ये किस मुद्दे से या मकसद से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंसान जिंदगी को आराम से ले रहा होता है या जो सहज मन से चलता है, जो शांत होता है, उसको वीक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद वो सवाल वहां से आ रहा होगा कि क्या ये हम अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: कई लोग ऐसा समझते हैं, ये भी एक आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट शादी में भी कई बार टॉक होगा ना, तुमको कहेंगे आप इतना शांत नहीं कर देना इतना। सो समवेयर यू फील कि स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू वेरी कंटेंट इन लाइफ, फिर तो कोई डिजायर नहीं होगी, फिर आप भागेंगे नहीं, फिर आपके गोल्स नहीं होंगे। एक्चुअली वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होता है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके। वैसे भी आप देखें, जैसे एक आप पहाड़ भी चढ़ते हैं तो आपको व्यू तो ऊपर से ही मिलता है, है ना? लेकिन जो आप बनते हैं वो चढ़ने से बनते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, आपने जो एंजॉय किया उस समिट पे, जो आप जो व्यू है ना, वो बेसिकली रिजल्ट है। वो एक गिफ्ट की तरह है। तो देखने में लगता है कि इट इज द एंड गोल, बट जो आपको बनाता है इट इज ऑलवेज द जर्नी। सो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज फोकसेस ऑन द जर्नी कि मान अपमान है, निंदा स्तुति है, हार जीत है, सफलता असफलता है, इट इज ओके। हर चीज आपको ग्रो करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग थ्रू इट, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू इट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैलेंजेस, बट द चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रो। तो बेसिकली वो आपको वीक नहीं बनाती, वो तो बहुत आपको स्ट्रांग बनाती है। इनफैक्ट जिस समय पर आप कोलैप्स कर सकते हैं उस समय पर भी आप बहुत स्टेबल खड़े होते हैं। लेटली आई मेट दिस सिस्टर, एक ट्रिप पे थी तो उन्होंने सुनाया कि वो स्पिरिचुअलिटी में उनको सिर्फ 4 months हुए थे चलते हुए। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है, क्लास करती है, और उनकी डॉटर थी जिसको अचानक हेडेक्स होने शुरू हुए।
2: अच्छा।
3: अब वो खुद भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, और एक ही डॉटर है 9th standard में।
2: अच्छा।
3: और पहले की बात सुना रही थी कि उसको काफी हेडेक्स हुए, उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, डायग्नोस ही नहीं हो पाया क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक्स पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा। एंड शी सेड कि मैंने अपना जॉब छोड़ा क्योंकि उसको होम स्कूलिंग करनी पड़ी। वो स्कूल नहीं जा पाती थी। देन इट बिकेम सो सीवियर कि वो ब्रश करने गई और वहीं गिर गई, बेहोश हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कर रही है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 4 years। 4 years she said we went to the best doctors Indore mein, Mumbai mein, everywhere, neurosurgeon, sab kuch, par diagnosis nahi hua. 4 years ke baad wo ekdam khatam ho gaya.
2: Achha.
3: Kya bimari thi pata nahi. Then she could go back to college. Abhi wo bhi apni medicine kar rahi hai. But she said wo 4 years ka jo period tha itna challenging. Agar main spiritually strong nahi hoti, stable nahi hoti, to kabhi bhi hum usko cross nahi kar pate, kyunki us samay par usko homeschool karna, treatment dena, उसके दर्द से परे रहना। एंड शी सेड दिस स्टेटमेंट विच वी लर्न, शी सेड हम जो एक लाइन कहते हैं, साक्षी होकर के देखो तो वातावरण का सेख भी नहीं पड़ेगा। मैंने इफ यू आर डिटैच्ड, डिटैच का मतलब बच्चे से डिटैच नहीं, बच्चे के दर्द से बहुत पेनफुल है ना आपका, योर ओन चाइल्ड इज इन सो मच पेन। सो डिटैच आप किससे हो रहे हैं, नेगेटिविटी से, दर्द से, सिचुएशन से नहीं, व्यक्ति से नहीं। हम डिटैचमेंट किससे समझते हैं, व्यक्ति या परिस्थिति से।
2: बहुत खूबसूरत।
3: यू आर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन, आप उस समय पर हैं। एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी जो है, हम कहते हैं कि अगर आप साक्षी होकर के देखेंगे तो वातावरण का सेक नहीं पड़ेगा, माना जो एनवायरमेंट है
2: उसका
3: इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। सो स्पिरिचुअलिटी आई फील इज नॉट मेकिंग यू वीक, इट इज रादर गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ टू डील विद व्हाटएवर चैलेंजेस यू आर गोइंग थ्रू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: With Priscilla, it's hot.
1: Good morning. ओए कॉफी हाथ में है या अभी भी तुम ब्लैंकेट एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में हो? अब ब्रेकअप का टाइम हो चुका है क्योंकि मैं बोलूं तो प्रिसिला आ चुकी हूँ लेकर तुम्हारे लिए मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर सुबह होती है थोड़ी सी फिल्मी, थोड़ी सी फनी एंड काफी देसी। अब चाहे तुम ट्रैफिक में फंसे हो या फिर ऑफिस के लिए ट्रेन पकड़ रहे हो या फिर घर से वर्क फ्रॉम होम की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने फ्रिज को खोलकर पिछले 15 सेकंड से घूरे जा रहे हो, यूर इन द राइट प्लेस क्योंकि अगले कुछ घंटे तुम्हारे दिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट घंटे होने वाले हैं क्योंकि हम इन घंटों में बनाएंगे तुम्हारे पूरे दिन को मिर्चीदार। हम बोले तो मैं और तुम। नेक्स्ट लिटिल वाइल में होने वाला है कुछ बॉलीवुड का तड़का, मस्त म्यूजिक, फन स्टोरीज, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें और साथ साथ में कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। इतना सब कुछ तुम्हें एक ही पैकेट में मिल रहा है जिस पैकेट को कहते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी के अभी चाहिए, ये किसने डिसाइड किया है ये वीकडेज जो है वो मंडे से फ्राइडे होते हैं? यार मेरी बॉडी तो थर्सडे को भी संडे की तरह बिहेव करती है। Does this happen to you? फटाफट से मुझे DM करके बताओ। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाती हूँ तुम्हारे लिए मिर्ची तार बैंगर्स टू वेक यू अप। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway ki or se, aap aur aapke parivar ko Guru Purnima evam Rudrabhishek Mahotsav mein snehpoorn aamantran. Shanivar 1 August ko subah 10 baje Shivji Rudrabhishek aur sham 5 baje Virat Deep Yagya. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200. जय गुरुदेव.
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
8: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा.
9: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टप है?
8: अते एक बार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे.

0: ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो एक मिनट में चलते हैं हिस्ट्री में टाइम ट्रैवलिंग करते हुए। सबसे पहले चलते हैं 1856 में, जब जन्म हुआ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, वो लेजेंड जिन्होंने कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट। और उसके बाद 1903 में फोर्ड ने अपनी पहली कार बेची। सो टेक्निकली किसी की रोड ट्रिप कहीं ना कहीं इस दिन शुरू हुई होगी। फिर आया 1906, जब जन्म हुआ चंद्रशेखर आजाद का, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही हिम्मत और आजादी की स्पिरिट से जुड़ गया। जंप करते हैं 1952 में, इजिप्ट में रेवोल्यूशन हुआ और मोनार्की का चैप्टर दी एंड हो गया। और स्काई लवर्स के लिए 1995 में डिस्कवर हुआ कॉमेट हेल बॉब, जिसने दुनिया भर के लोगों को रात के आसमान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। और 1999 में आते हैं, स्पेस शटल कोलंबिया लॉन्च हुई, जहां पर आइलीन कॉलिंस बनी हिस्ट्री की फर्स्ट फीमेल स्पेस शटल कमांडर। और ऐसा ही कुछ फन फैक्ट या फिर अनोखा फैक्ट तुम्हें पता हो तो मुझे बताओ। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और सोचो कि तुम मूवी देख रहे हो, स्क्रीन पर दिख रहे हैं मैट डेमन, लेकिन एक डेंजरस एक्शन सीन में जो बंदा तुम समझ रहे हो वो बंदा है ही नहीं। सरप्राइज, वो एक्चुअली एक वुमन स्टंट परफॉर्मर है। जी हाँ, इनका नाम है डेविन डाल्टन। शी इज 4 feet 6 inches टॉल और उन्होंने दी ओडिसी में मैट डेमन का बॉडी डबल बनकर वो एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म किए हैं जहां पर जायंट मॉन्स्टर्स ओडिसियस का पीछा करते हैं और ट्विस्ट उनके सामने द 7 foot टॉल स्टंट परफॉर्मर्स थे। मैट डेमन ने तो खुद कहा है यार, माय बॉडी डबल वाज अ वुमन विद द ग्रेटेस्ट आर्म्स आई हैव एवर सीन। मतलब कि बाइसेप्स इतने सॉलिड है कि जिम मेंबरशिप भी खुद शर्मा जाए। देखो, कभी भी किसी को उसकी हाइट से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस, उसके टैलेंट और उसके स्किल सेट पर ध्यान देना चाहिए। वो कई बार लोगों का एक्स्ट्रा लार्ज ही होता है। वैसे अगर मुझे हॉलीवुड में किसी का बॉडी डबल बनना हो तो शायद मैं सिर्फ कॉफी पीने वाला सीन कर पाऊंगी, क्योंकि और कुछ मुझे आता नहीं है। तुम अगर किसी के बॉडी डबल बनते तो तुम कौन से सीन्स करते है? बताओ मुझे। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करती हूँ। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतू राज। Only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहां पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है। तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्ची, 3.5 स्टार्स ओडिसी। एक बार अवश्य देखिए, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज।
0: साथ जीतूराज, only on मिर्ची इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: Island, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucas destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
7: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
8: to aaiye फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: क्या ही गाने लगाते हो ना मैं तुम्हारे लिए। मिर्ची मॉर्निंग्स में मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो मौसम का हाल चाल पता करते हैं। अभी बाहर टेम्परेचर हो रहा है 62 डिग्री फारेनहाइट, विच इज ब्राइट एंड सनी। अगर तुम मॉर्निंग वॉक पर निकले हो या फिर ऑफिस ड्राइव शुरू कर दी है तो वेदर बोल रहा है हेलो सनशाइन, लेकिन अराउंड 11 बजे के आसपास थोड़ा पार्टली क्लाउडी स्काइज आ जाने वाले हैं। मतलब कि सूरज जो है ना वो बादलों के साथ मिलकर आज मौसम को शेयर कर रहा है। आज का हाई रहने वाला है 81 डिग्री फारेनहाइट तक और लो जाएगा 62 डिग्री फारेनहाइट तक, लेकिन एक छोटू सा ट्विस्ट है। इट्स गोना फील लाइक 60 डिग्री से लेकर 85 डिग्री फारेनहाइट के बीच तक। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी, सनशाइन और हवा मिलकर अपनी अलग ही स्टोरी बना रहे हैं। और गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जीरो रेन है। हां जी, 0 मिलीमीटर्स का प्रेसिपिटेशन प्रिडिक्टेड है, तो आज अम्ब्रेला को गिल्ट फ्री होकर घर पर छोड़कर जाया जा सकता है। जैसे कल का कंपेरिजन करे तो आज थोड़ा सा कूलर फील होने वाला है। कल का हाई गया था 87 डिग्री फारेनहाइट तक और आज जाएगा 81 डिग्री फारेनहाइट तक। इसीलिए लेयर के प्लेयर बनो, साथ साथ में अपना SPF 50++++ छिपोड़ कर बाहर जाना और कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, बिकॉज पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जरूरी है मिर्चीदार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, मेरे आने की प्रिसिला के साथ। सुनते रहो तुम मुझे एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और ये है मिर्ची आवर के 3 ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले मिस्टर बीस्ट यानी कि जिमी डोनाल्डसन ऑफिशियली मैरिड फेलो क्रिएटर थिया पुइसन। वेडिंग सेलिब्रेशंस रिपोर्टेडली एक पूरे हफ्ते तक चले हैं एट अ प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट, और उनका कैप्शन था आई फाउंड मिस्टर बीस्ट क्यूट, और ब्रांड कंसिस्टेंसी भी है इसमें। नंबर 2 पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स को लेकर डेवलपमेंट्स जारी है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई प्यूनिटिव या रिटेलिटरी एक्शन ना लेने का अश्योरेंस दिया जाए और पार्लियामेंट में एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन पर कंसिडरेशन की डिस्कशन हो तो वो अपना फास्ट खत्म कर देंगे। इसी इशू पर अभिजीत दिपके जो कि CJP के फाउंडर है, उन्होंने अपना स्टैंड रिपीट किया है कि उनका प्रोटेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन तक जारी रहेगा। एंड लास्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को एक ओपन इनविटेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट हर इशू पर स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के हिसाब से एनी टाइम एनी प्लेस डिस्कशन के लिए रेडी है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर तुम हडसन बर्गन लाइट रेल से कम्यूट करते हो तो ये सुनो, एक एडवोकेसी ग्रुप हडसन काउंटी कंप्लीट स्ट्रीट्स चाहता है कि लाइट रेल और भी फ्रीक्वेंट चले हर 10 मिनट में और वो भी 24 आवर्स इंक्लूडिंग नाइट्स एंड वीकेंड्स। अभी तक उनकी पिटिशन को 700 से ज्यादा सिग्नेचर्स मिल चुके हैं

और गोल है सपोर्ट को और बढ़ाना। एनजे ट्रांजिट जो है वो भी फॉल ऑपरेशंस और स्केड्यूलिंग का स्टडी शुरू करने वाला है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि बेटर ऑफ पीक सर्विस एक अच्छा आइडिया है, बस बजट भी साथ देना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में बात हो रही है बर्गन काउंटी तक लाइट रेल एक्सटेंड करने की और फ्यूचर में बेफ्रंट और शायद एक दिन न्यूयॉर्क से भी बेटर कनेक्टिविटी करने की। अभी कोई फाइनल टाइमलाइन डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली ट्रैक पर चल रही है। मतलब आज की जो हेडलाइन है वो कह रही है कि कम्यूट में ट्रेन्स मिस कम हो और तुम्हें परफेक्ट टाइम पर ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन्स मिले और ज्यादा दूर तक मिले, विच आई थिंक विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एवरीवन। और एफिशिएंसी की बात हो रही है तो कोई स्पेशल ओकेजन के लिए अगर तुम परफेक्ट ज्वेलरी ढूंढ रहे हो तो जरूर से विजिट करो आरके ज्वेल्स, जहां पर बेस्ट क्वालिटी तुम्हें मिल रही है एट बेस्ट प्राइस, क्योंकि उनकी स्टनिंग कलेक्शन जो है फिलहाल वहां पर मौजूद है, उसे एक्सप्लोर करो जाकर। और अभी वहां पर मिल रहा है फ्री $250 का गिफ्ट कार्ड ऑन देयर एक्सक्विजिट ज्वेलरी कलेक्शन, क्योंकि डायमंड्स मे बी फॉरएवर लेकिन गुड डील जो है ना वो हाथ से निकल सकती कभी भी, तो इसीलिए पहुंचो फटाफट से आरके ज्वेल्स पर, जहां पर तुम्हें मिल रहा है बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट प्राइस। अभी मिलने वाले हैं तुम्हें मिर्ची दर बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसला के साथ। ऑफ कोर्स मुझे जाकर फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
1: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़िलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय बर्थडे सुपरस्टार्स, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और अगर आज यानी कि 23 जुलाई को तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो मिर्ची फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, टाइट वाले जप्पी एंड एक पपी एंड साथ में हैप्पी बर्थडे। एंड गेस व्हाट, आज तुम अकेले केक नहीं काटने वाले हो, मतलब तुम अपने घर में अपने दोस्तों के साथ केक काटोगे, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं जो केक काट रहे हैं। सबसे पहले वी गॉट डैनियल रैडक्लिफ, हाँ जी, हमारे हैरी पॉटर जी। तो अगर तुम्हें भी आज ऑफिस में मैजिक की जरूरत फील होने लगे तो बस अकियो कॉफी बोल देना, गारंटी नहीं है लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। और बर्थडे है आज एक्टर वुडी हैरल्सन का, ये मुझे काफी पसंद है। साथ में हिलेरियस मार्लन वेन्स, सुपर टैलेंटेड कैथरीन हान और गिटार लेजेंड स्लैश का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और म्यूजिक लवर्स के लिए मिशेल विलियम्स फ्रॉम डेस्टिनीज चाइल्ड एंड साथ ही पॉल वीजली फ्रॉम द वैम्पायर डायरीज, करिश्मा कारपेंटर और द लेट एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर फिलिप सीमोर हॉफमैन, इनकी काफी सारी अमेजिंग मूवीज हैं, यू शुड डेफिनेटली गिव देम अ ट्राई। मतलब अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम्हारे अंदर ना टैलेंट की कमी है, ना क्रिएटिविटी की और डेफिनेटली मैजिक की बिल्कुल भी नहीं है। तो पूरा दिन सेलिब्रेट करो, एक्स्ट्रा डिजर्ट खाओ, कैलोरीज को भूल जाओ और आज के दिन तुम ढेर सारी सिर्फ खुशियां ही खुशियां मनाओ, ये मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। एंड नाउ आई एम गोना प्ले सम अमेजिंग म्यूजिक फॉर यू, एकदम मिर्चीदार बैंगर्स। मेरा नाम है प्रिसिला, कनेक्ट करो मुझसे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। ये है इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप अगर करना चाहते हो मुझे तो 9033 मिर्ची, दैट्स माय नंबर, 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिनट की ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ओके जी, हम पहुंच गए वहां पर जहां पर तुम्हें गोल्ड रेट अपडेट मिलने वाला है। मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: राज वाज विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,075, $4,075 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। राज ज्वेल्स के साथ आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें जहां पे आप 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, 9 मंथ की फाइनेंसिंग के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट डायमंड ज्वेलरी एंड GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, येलो सफायर्स, ब्लू सफायर्स एंड एमरल्ड्स, जो एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स आपको अपनी रिंग में डिजाइन करने हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स आप 0% इंटरेस्ट, 9 मंथ की फाइनेंसिंग में आज अप्रूव होने पे घर ले जाएं और बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के पैसे दें 9th मंथ में। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू।
1: एंड देयर यू हैव इट, लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मुझे Mirchi Mornings पर. And अब around the world क्या घट रहा है, let's find out. सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें फीवर और सिवियर बॉडी एक था और वो पेन किलर्स के साथ मैनेज कर रहे थे. उन्होंने जंतर मंतर ना पहुंच पाने के लिए माफी मांगी है और कहा है कि वो शाम तक प्रोटेस्ट साइट्स वापस लौटने की कोशिश करेंगे. नंबर टू पर येट अगेन फ्रॉम इंडिया, पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान एनडीए और आईएनडीआईए ब्लॉक के एमपीज ने पार्लियामेंट प्रोमाइसेस में एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट और स्लोगन्स किए. ऑपोजिशन एमपीज नीट और पेपर लीक से जुड़े प्लकार्ड्स लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे. सेशन के दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटी काफी गर्मा गर्मी में रही. एंड लास्टली, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान एक वायरल वीडियो के बाद एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा को वहां की ड्यूटी से हटा दिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें उनकी ओरिजिनल पोस्टिंग पर वापस भेज दिया गया है. इस मामले को लेकर लीगल प्रोसीडिंग्स और अकाउंटेबिलिटी की मांग भी सामने आई है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर फॉर दिस आवर. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply. Listen.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू राशि जोन, जहाँ पर हम पता करेंगे कि आज हमारे दिन में क्या कह रहे हैं सितारे।
0: मिर्ची राशि जोन
1: एरीज यानी कि मेष राशि, फाइनली लग रहा है लाइफ थोड़ी सी सिंक में आ रही है। मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेड खत्म होने से कंफ्यूजन का ट्रैफिक भी क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, फन मोड तो ऑन है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आर यू अवेलेबल पूछ रही है, इग्नोर मत करो इन्हें, गो डू योर ड्यूटी। लकी कलर फॉर यू इज कोबाल्ट, लकी नंबर इज 31। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वॉलेट को आज थोड़ा सा प्यार दो, कॉफी ठीक है लेकिन चौथी आइस्ड लाटे शायद जरूरी नहीं थी, बजट बनाओ, फ्यूचर वाला यू विल थैंक यू। लकी कलर फॉर यू इज लाइट पर्पल, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी खड़क राशि, आज इमोशंस से ज्यादा फैक्ट्स पे भरोसा करो, दिल क्यूट है लेकिन बैंक बैलेंस जो है ना उसका कैलकुलेशन दिमाग से चलता है। लकी कलर फॉर यू इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 22। लियो यानी कि सिंह राशि, आज अपनी बात कॉन्फिडेंटली बोलो, हर बार डिप्लोमेसी की भी एक्सपायरी डेट होती है, बस सच बोलो स्टाइल के साथ बोलो। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव ग्रीन, लकी नंबर इज 5। वर्गो यानी कन्या राशि, मर्क्यूरी फाइनली सीधा चल पड़ा है और तुम्हारा ब्रेन जो है वो भी, जो फाइनेंशियल इश्यूज इग्नोर कर रहे थे आज उनका सोल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। लकी कलर फॉर यू इज नेवी ब्लू, लकी नंबर इज 40। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 1। बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी मेरा राशि जोन पार्ट 2 में इन जस्ट अ व्हाइल। तब तक के लिए तुम ये मिर्चीदार बैंगर्स सुनो जो आने वाले हैं और

जाओ मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: क्लैरिटी टाइम मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अभी क्लियर करते हैं कि आज तुम्हारी राशि में क्या लिखा हुआ है।
2: मिर्ची राशि जोन
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि। जो इंसान रिसेंटली इमोशनल रोलर कोस्टर पे था वो आज सरप्राइजिंगली काम है। सेकेंड चांस देना बनता है राइट। लकी कलर फॉर यू इज ग्रे। लकी नंबर इज 14। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हर ट्रूथ जो है उसे बोलना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी पीस भी एक अचीवमेंट होती है। आज अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन स्किप करो। लकी कलर फॉर यू इज अजूर। लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। वीकेंड से पहले बजट चेक कर लो। शॉपिंग कार्ट को फिलहाल लेटर बोलना हेल्दी रहेगा। लकी कलर फॉर यू इज बर्न्ट ऑरेंज। लकी नंबर इज 33। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। जो प्रॉब्लम इम्पॉसिबल लग रही थी आज उसका आंसर बिल्कुल सामने नजर आएगा। ओवरथिंकिंग बंद करो, एक्शन शुरू करो। लकी कलर फॉर यू इज ऑबर्न एंड लकी नंबर इज 11। अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। हर चीज का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होता है। कभी कभी लाइफ स्पॉइलर अलर्ट के बिना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ट्रस्ट द प्रोसेस। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू। लकी नंबर इज 42। That rhymed. Pisces यानी कि मीन राशि। क्रिएटिव एनर्जी फुल पावर में है। जो प्रोजेक्ट रुक गया था उसे दोबारा शुरू करो। इंस्पिरेशन आज ओवर टाइम कर रही है तुम्हारे लिए। लकी कलर फॉर यू इज कोरल पिंक। लकी नंबर इज 16। एंड दैट वाज द एंड ऑफ राशि जोन पार्ट 2 विद मी प्रिसिला। ऑफ कोर्स दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे फटाफट से कनेक्ट कर लो। इंस्टा और एक्स पे मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे tune and stay hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया और हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है। तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स। ओडिसी एक बार अवश्य देखिए और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और बस आज की मिर्ची मॉर्निंग्स की ये सुबह यहाँ पर खत्म होती है, मतलब रैप अप का टाइम आ चुका है। लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक स्पोर्ट्स वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताकर जाती हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने नेशनल क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग कैंप्स में पैडल को कंपलसरी कर दिया है। हाँ जी, अब सिर्फ नेट्स ही नहीं बल्कि रैकेट भी चलने वाला है वहां पर। प्लेयर्स हर दूसरे दिन लगभग 40 मिनट्स पैडल खेलेंगे ताकि उनकी फिटनेस, उनका मूवमेंट, उनकी रिफ्लेक्सेस और फील्डिंग जो है वो और बेटर हो जाए। एंड ऑनेस्टली लॉन्ग ट्रेनिंग कैंप्स में थोड़ा सा फन तो बनता है यार। और पैडल सुन के मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया कि उन्हें बोटिंग भी करानी चाहिए, फिर पता चल जाएगा कि एक्चुअली इनको क्रिकेट खेलने के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं। देसी लोग तो वैसे भी हर गेम में एक्सपर्ट होते हैं, तुमको नहीं लगता है? हर चीज में तो कॉम्पिटिशन करते हैं हम देसी लोग। तुम अपने रिश्तेदारों को, खुद को, मुझे, सबको देख लो। तो आज का टेक अवे है कि कभी कभी अपनी रूटीन जो है उसमें कुछ नया गेम ऐड करना चाहिए, अपने गेम को चेंज करते रहना चाहिए, जिससे तुम्हारी बॉडी तो खुश हो ही जाएगी, माइंड ज्यादा खुश हो जाएगा और मंडे थोड़ा लेस मंडे लगेगा। वैसे आज हम मंडे की बात नहीं करेंगे, वीकेंड वाइब्स आर ऑलमोस्ट हियर। मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी सुबह स्पेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलूंगी तुम्हें फ्रेश म्यूजिक, मिर्चीदार बैंगर्स, बॉलीवुड की गॉसिप और नई नई खबरें लेकर। मेरा नाम है प्रिसिला, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। जाकर मुझसे कनेक्ट करो, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: हमने एक चीज नोटिस करी, बड़े दिनों से हमने पठती पठत पठंती नहीं बोला यार।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. यार ये जो वक्त है ना, ये जब गया तो इसके साथ हमारी संस्कृत की क्लासेस भी चली गई, और साथ ही साथ हमारा ये कहना कि पठती पठत पठंती ये भी निकल गया यार। बड़ी मुश्किलों से याद किया करते थे यार हम, मुझे तो याद भी नहीं कि इसको क्या कहा करते थे, लेकिन आज एकदम से जब इस बात को मैंने सोचा और इस बात का जिक्र खुद से ही किया तो आई रियलाइज्ड सालों हो गए यार मुझे ये बोले हुए, और जो तसल्ली मिली है ना मुझे ये बोलकर, पठती पठत पठंती, ओहो हो हो हो। हालांकि मैं अपने सारे लेसन्स भूल चुकी हूँ, लेकिन तसल्ली मुझे आज भी याद है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप और मैं साथ में बोलते हैं, हाँ, एट द काउंट ऑफ थ्री लेट्स स्पीक इट टुगेदर, सो दैट हम हमारी पुरानी यादें जो है उसको ताजा कर पाए, क्या बोलते हो? तो एट द काउंट ऑफ थ्री, 1 2 3, पठती पठत पठंती। आई ना दिल को तसल्ली, कुछ तो है यार बात, कुछ तो है इन तीन लफ्जों में, कुछ ऐसी बात है जो शायद आई लव यू में भी नहीं महसूस हो रहा है आजकल। ये तीन लफ्ज ले जाते हैं हमें स्कूल की ओर, संस्कृत की क्लासेस की तरफ, जहां नंबर लाना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं मैथ्स से ज्यादा संस्कृत से डरा करती थी, क्योंकि मैथ्स कभी मुझे समझ तो आ जाया करती थी, संस्कृत ना मुन्ना ना, ना मुझे समझ आती थी और ना इसकी ट्यूशन क्लासेस मिलती थी कि कोई समझा दे। बहुत टफ हुआ करता था यार लाइफ का वो दौर, आई टेल यू। चलो जी, विद दिस मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब काले काले बाल गाल गोरे गोरे अरे ओरे ओरे, याद आया ये गाना? और ये गाना तो फ्रॉम द फिल्म जिद्दी.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And this film, जिद्दी, इस फिल्म में आशीष विद्यार्थी का रोल

बड़ा पसंद आया था। इनफैक्ट एज ए किड मैं तो डर गई थी भाई उस रोल से। लेकिन आशीष विद्यार्थी का कहना था कि उनका ये जो रोल था ना, ये डायरेक्टर ने एक्सटेंड कर दिया था। उनका रोल वॉज सपोज टू एंड एट द इंटरवेल, लेकिन फिर इवेंचुअली उस कैरेक्टर को मेन विलन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और फिर उसको लंबा चलाया थ्रू आउट द फिल्म। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फिल्म, तो इस फिल्म से ज्यादा किसी ने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी दिस फिल्म टर्न्ड आउट टू बी अ मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट और 1997 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स में से एक थी। और इसके गाने, जिनमें से एक गाना ये भी था कि मेरे दिल ले गई ओए कम किधर मैं देखूं उसको इधर उधर, जस्सी का गाया हुआ ये गाना तो 90s की पार्टीज में बड़ा मशहूर हुआ करता था यार, जो हमने कभी अटेंड नहीं करी क्योंकि हम तो बच्चे थे। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता था कि ये गाना हिट है क्योंकि काउंटडाउन शोज पर हमेशा ये गाना आया करता था। पता नहीं कितने जमाने तक तो काउंटडाउन शोज पर ये गाना रहा है। और ऑफकोर्स जब भी कभी इधर उधर म्यूजिक सिस्टम बजता था किसी शादी में या किसी की छत पर या कहीं पर भी, तो ये गाना तो चलता ही चलता था। हमें भी पसंद था और सबको पसंद था, तो बात जाहिर थी, जग जाहिर थी कि ये गाना दुनिया भर को पसंद है। और इस गाने ने पंजाबी पॉप को इसी तरीके से बॉलीवुड मेनस्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया था। एंड इनफैक्ट उस जमाने की रिसर्च वर्क के हिसाब से ना, ये फिल्म जो हिट हुई ना, वो सिंगल स्क्रीन सिनेमास की वजह से बहुत हिट हुई, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये यूपी, बिहार और पंजाब जैसे स्टेट्स में बहुत चली थी बिकॉज ऑफ द रॉ अपील। और सीटी मार डायलॉग्स लोगों को बड़े पसंद आए, जो आई थिंक लोगों की आज भी पसंद है। पब्लिक आज भी ना खूब सीटियां बजाती है जब डायलॉग्स एकदम अटपटे निकल कर आ जाते हैं, या यूं कहें कि चटपटे निकल कर आ जाते हैं, और साउथ की फिल्में इसी वजह से काम कर रही है। इस फिल्म को देखने के बाद विलेन से तो डर लग ही रहा था, ऊपर से सनी पाजी का गुस्सा, वो देखकर भी ऑडियंस बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन जो ऑडियंस सनी पाजी का गुस्सा देखकर खुश हो रही थी ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन वो लोगों को डरा रहा था। कैसे बताऊंगी आपको थोड़ी देर में, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: Nacho all night. Do you feel alright? Wanna nacho all night?

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू लाइन।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, सनी पाजी के गुस्से से लगता है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा जब जिद्दी मूवी शूट हो रही थी ना, उस टाइम पर सबको लग रहा था।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And there was this one scene जहां पर सनी पाजी को ना एक टेबल गुस्से में तोड़नी थी। वो टेबल थी तो प्रॉप, लेकिन टूट ही नहीं रही थी जो कि एक्सपेक्ट किया गया था उससे। तो सनी पाजी ने फुल इंटेंसिटी मोड में एक रियल वुडन टेबल तोड़ दिया यार, और जितने भी क्रू मेंबर्स थे ना, वो सारे के सारे जो है एकदम भौचक्के रह गए। एंड इन फैक्ट ड्यूरिंग द इंटेंस सीन्स ना, सनी पाजी अपने कैरेक्टर में इतने ज्यादा रहा करते थे कि एक को एक्टर ने जोकिंगली ये भी कह दिया था कि जब सनी पाजी गुस्से में हो रहे होते हैं ना, अपने कैरेक्टर के अंदर होते हैं, तो आप कट बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हो और दुआ करते हो कि ये गुस्सा जो है ये ठंडा हो जाए, ताकि ये कट अपने आप निकल कर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस गुस्से के डर से कोई सेट पर कट नहीं बोला करता था, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। वैसे एक और मजेदार बात है इस फिल्म के बारे में, और वो ये है कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं गुड्डू धनोआ, उन्होंने ये बात बताई थी कि उनके पास ना इस फिल्म को लेकर एक छोटा सा आइडिया था जिस पर कि इन्होंने पूरी तरीके से काम नहीं किया था। एक प्रॉपर स्टोरी नहीं थी, और ये लोग जा रहे थे सनी पाजी के पास इस फिल्म की स्टोरी को नरेट करने के लिए। तो रातों रात उन्होंने और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं बबलू पचीसिया, उन दोनों ने बैठकर एक स्टोरी बनाई, और पचीसिया जो है वो नोटबुक और पेन लेकर बैठे और उन्होंने पूरा का पूरा जॉट डाउन किया। फिर उसके बाद वो लोग गए स्क्रीन प्ले राइटर के पास, वहां पर उन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, और अगली सुबह दे वेंट एंड गेव द नरेशन टू सनी देओल। और इतनी मेहनत उनकी सफल हो गई क्योंकि सनी पाजी ने बोल दिया हाँ। और जैसे ये लोग नरेशन के बाद उस होटल रूम से बाहर निकले, तो इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ने एक दूसरे को जो झप्पियां पाई हैं, बिकॉज इट वाज अ बिग डील टू एक्चुअली गेट सनी देओल ऑन बोर्ड। एंड सनी देओल नरेशन में अगर ना कह चुके तो ना कह चुके, उसके बाद उनकी हाँ कभी होती नहीं है। स्टोरी लाइन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है, ये सब कहते हैं, और वो बड़ी संजीदगी से बैठ के स्टोरी सुन रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स धक धक तो सभी का दिल कर रहा होता है उस टाइम पर। लेकिन एक बात और निकल कर आ गई इस फिल्म से कि फिल्म का नाम तो जिद्दी था ही था, और इस फिल्म में काम करने वाले भी जिद्दी ही थे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुर्ता पजामा में से कुर्ता निकल गया है और रह गया है बस पजामा।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And आजकल कुर्ता पजामा is something जो सिर्फ शादियों और त्योहारों पर ही पहना जाता है और घर पर पजामा टी शर्ट में ही बंदा नजर आता है। But back in 90s, ऑफिस से आने के बाद हर शाम ना डैडी कुर्ता पजामा ही पहना करते थे। पहनते वो थे इन कपड़ों को और सुकून मुझे मिलता था। सफेद रंग के कॉटन के ये कुर्ते पजामे का चलन मुझे बड़ा पसंद आता था और हमेशा पसंद आता रहेगा। यू नो, ये सारे के सारे कुर्ते पजामे जो है ये धोबी के पास जाया करते थे। इन पे कलफ लगा करता था, कड़क प्रेस हुआ करती थी, सफेद दिखते थे हमेशा के हमेशा। और अलमारी में भी जब इनका स्टैक रखा जाता था ना, तो वो इतना नीट लगता था ना कि वन आफ्टर दी अदर सारे कुर्ते पजामे सफेद हुआ करते थे, लेकिन अलग हुआ करते थे। हर दिन का एक अलग कुर्ता पजामा। और ऐसा कभी होता ही नहीं था कि डैडी ऑफिस के कपड़ों में बैठकर डिनर किया करते थे। He always used to make sure कि वो घर आने के बाद चेंज करते थे और फिर हम सब साथ बैठकर खाना खाया करते थे। और संडे को तो ये साफ जाहिर होता था कि आज संडे है बॉस, क्योंकि डैडी पूरे दिन कुर्ते पजामे में जो होते थे उस दिन, और फिर नहाने के बाद भी वैसा ही एक सफेद कुर्ता पजामा पहना करते थे। कुर्ता पजामा ना उस टाइम का कॉर्ड सेट हुआ करता था, लेकिन बंदियों के लिए नहीं, बंदों के लिए। हर एक घर में कुर्ते पजामे का चलन इतना हुआ करता था जो आज कहीं देखने को मिलता ही नहीं है यार। इनफैक्ट आज भी जब किसी बंदे को मैं कुर्ते पजामे में देखती हूँ ना, माय हार्ट स्किप्स अ बीट फॉर श्योर। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर आपको चूज करना है बिटवीन टी शर्ट एंड पजामा एंड कुर्ता पजामा, तो घर में पहनने के हिसाब से व्हाट वुड यू प्रेफर? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। एंड ये प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियां भी बता सकती हैं यार कि उन्हें बंदे किस में ज्यादा पसंद आते हैं, और लड़के ऑफ कोर्स अपनी चॉइस बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Kagaz ki Kashti.
2: यादों को चिट्ठी।
1: यार तुम थी तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, मगर कागज के टुकड़े से बने होने के बावजूद तुम जिगर का टुकड़ा बन गई थी। रफ कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ कर तुम्हें बनाने पर बड़ी डांटे पड़ा करती थी, लेकिन क्या करते यार, आदत से मजबूर थे कि अगर बारिश हुई है और छत पर वाटर लॉगिंग है तो हम कैसे बिना एक भी कागज की कश्ती तैराए रह सकते थे। और सिर्फ बरसात ही नहीं, स्कूल में भी कभी कभी ना लास्ट पीरियड जब फ्री होता था तो बोर होने के बजाय हम एक पेपर लेते और तुम्हें बनाने लग जाते। तब एक्चुअली टाइम पास करने के लिए रील्स नहीं हुआ करती थी ना, तो इतनी क्रिएटिवली टाइम पास किया करते थे। और तुम सबसे ग्लैमरस लगती थी अगर तुम्हें मैगजीन के कागज से बनाया जाता था, पर ये बहुत रेयर हुआ करता था कि मैगजीन को रद्दी में पाया जाता था, कॉज उसकी भी तो घर में अपनी ही जगह थी। आज क्रूज में ट्रैवल कर चुके, एरोप्लेन्स में बैठ चुके, यॉट पे ट्रैवल कर चुके, लेकिन वो फील कभी नहीं आई जो तुम्हारे साथ खेलते हुए सोचा करते थे, ये इमेजिन करते हुए कि हम तुम में बैठकर नदी क्रॉस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं सिर्फ इतना इमेजिन ही नहीं किया करती थी कि मैं तुम्हारे अंदर बैठी हुई हूँ, बल्कि अगर आसपास कोई मकोड़ा दिख जाता था ना तो मैं उसे तुम में बिठा दिया करती थी, ताकि कोई तो सवारी एक्चुअली में तुम्हारे मजे ले सके। बचपन में ना ये गजल नहीं सुनी थी, लेकिन जब बड़े होकर ये सुनी तो सिर्फ सुनी नहीं, चुभी। जब जगजीत सिंह साहब ने गाया कि कोई मुझे लौटा दे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तुम्हें बनाना भूल गई हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूली हूँ। अपने ख्यालों में तुम पर सवार होती वाटर लॉग्ड नदी को क्रॉस करती हुई तुम्हारी सारा। यहाँ के अलावा अगर आप मुझे कहीं ढूंढना चाहते हैं, सो द करेक्ट एड्रेस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
10: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
9: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
11: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है.
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है। होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहां पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया और हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखे, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है। तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स। ओडिसी एक बार अवश्य देखिए, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कभी खुशी कभी गम की जितने भी पेपी ट्रैक्स है ना, उन सब में कहीं ना कहीं एक नोकझोंक है। इनफैक्ट शावा शावा जो गाना है उसके अंदर भी बाय द एंड ऑफ द गाना अमित जी और जया जी के बीच में एक छोटी सी टसल हो ही जाती है। वैसे ये गाना है जिसमें ऋतिक रोशन और करीना कपूर के बीच की टसल से शुरू हुआ ये गाना एंड में प्यार में तब्दील हो ही जाता है। अलका याग्निक, सोनू निगम, करीना कपूर की आवाज में दिस गाना इज कैसेट के साइड ए का दूसरा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: दीवाना है देखो यार, ये गाना मुझे बहुत पसंद था। मोर सो बिकॉज एक तो ये डिस्कोटेक वाला गाना था और इसके अंदर इतना फैशन था कि ओ हो मजा ही आ जाता था यार। देखो हमें तो स्कूल में फैशन फॉलो करने को मिलता नहीं था, जो कर रहा होता था उसे देख देख कर ही हम खुश हो जाया करते थे। वैसे ये जो गाना है ना, ये एक्चुअली इज अ हेड्स अप। जब आपको प्यार होने वाला होता है ना, तो एक्चुअली ऐसा होता है कि आपका दिल जो है वो तो कह रहा होता है कि यार इससे प्यार में पड़ जा, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो आपको कह रहा होता है ओ हो सीधे रहो, ज्यादा प्यार व्यार में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्योंकि दिमाग को पता है ना यार कि एक बार अगर दिल ने अपना दिल दे दिया तो होगा ये कि रातों की नींदें उड़ जाएंगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, काम जो है वो डिले होते जाएंगे, इंसान यहाँ बैठा होगा लेकिन यहाँ ना होकर कहीं और होगा। एंड दिमाग डजंट वांट टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। तभी तो कहा गया है कि दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो ना प्यार हो, अपना बना के देखो दिल ना चुरा ले वो, ऐसा क्यों लगे है बोलो ना। देखो लगता तो है वाकई में, लेकिन खुद को कंट्रोल भी कर रहा होता है इंसान की नहीं नहीं नहीं नहीं पढ़ना, इतनी जल्दी प्यार में नहीं पढ़ना, इतनी आसानी से गिव इन नहीं करना। और मुझे ना इस गाने की ये वाली जो लाइन है ये बड़ी प्यारी लगती है कि पहली बार देखा है ऐसा अजनबी ना अजनबी के जैसा। एंड आई टेल यू वन थिंग, आपको भी ये बात कहीं ना कहीं लगी होगी कि न जाने कितने सारे लोगों से ऑन डेली बेसिस मिलते हैं, कभी कभी तो हम स्ट्रेंजर्स के साथ डेट पे भी चले जाते हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारे लिए बना होता है, जिस पे दिल आना होता है ना, वो हमें पहली बार भी जब मिला होता है ना तो भी वो अजनबी नहीं लग रहा होता है, अपना सा लग रहा होता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली अ साइन कि कुछ तो बात है कि ये अजनबी अजनबी सा नहीं लग रहा। ऐसे वाले सिनेरियोज में कंफ्यूज मत हुआ करो, दूसरी तीसरी और फिर चौथी डेट, और फिर आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। लेकिन डिसकंटिन्यू मत कर देना पहली डेट के बाद, हाँ अगर ऐसी वाली फीलिंग आ रही है तो। चलो जी, अभी जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर तो मिल ही जाती हूँ मैं बाय द नेम मिर्ची सारा, तो दिल करे तो वहीं ढूंढ लीजिएगा। अभी के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लिसन टू द नेक्स्ट ट्रैक। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: ड्रामा चढ़ेगा नहीं थे।
1: ओजी कमेडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी चीज, ओनली ऑन मिर्ची।
0: अब पकड़ कर रखेगा जे।
2: हिंदी फिल्मों के कमेडियंस का जब जिक्र आएगा, महमूद साहब का नाम सबसे ऊपर आएगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि ये कॉमेडी क्या बचपन से करते थे और फिल्मी कॉमेडी उन्होंने कहाँ से सीखी, सुनिए।
3: मैं बचपन से मैं चीजों को ऑब्जर्व बहुत करता हूँ और जिसके साथ मैं बैठ के अगर मैंने बात करना शुरू किया तो थोड़ी देर के बाद में ऐसा लगता है कि मेरी शक्ल जो सामने वाला ही बोलता है कि आपकी शक्ल मेरे जैसी होती है, आपकी लैंग्वेज मेरे होती जैसी, ये मेरे में आदत बचपन से। ऐसा नहीं कि मैं को 30 मार्क्स हूँ, मेरे दिमाग से सब चीजें निकली, बहुत सारी चीजें देख के मैंने सीखी है। उसमें नंबर वन क्रेडिट गोज टू राज कपूर, उनके साथ में बैठ बैठ के बहुत सीखा है मैंने। गुरुदत्त दादा के साथ में बैठ बैठ के बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठ बैठ के इन्हें काफी इन्हें सीखा मैंने फिल्म के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता।
2: देखिए बस ऐसे ही सीखते सीखते बंदे ने अपना 50 साल का ब्रिलियंट करियर खड़ा कर लिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: आमा चढ़ेगा नहीं थे।
1: ओजी कमेडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी चीज, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पकड़ कर रखेगा जे।
2: क्या था महमूद साहब और अरुणा ईरानी जी का रिलेशनशिप? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वैसे अरुणा जी इंटरव्यूज में इस बारे में काफी ऑनेस्ट रही हैं। सुनिए एक बार उन्होंने क्या शेयर किया था।
3: जब महमूद साहब के साथ मैंने काम शुरू किया, उन्होंने मुझे काम दिलाना शुरू किया, मुझे काम मिलने लग गया था, मेरा घर संभल गया था उनकी वजह से। तो मुझे लगता था कि खुदा ने भेजा हुआ आदमी है। इमोशंस होते होते कब लाइकिंग बढ़ गई। I know that he was a married man, we couldn't get married. लेकिन we were more than एक friends रहते, उससे भी आगे थे हम। He made my career. पर जब मेरी ये फिल्म बनी बॉम्बे टू गोवा और एक रूमर बाहर आई कि आई एम मैरिड टू महमूद, मुझसे तो कोई पूछने नहीं आता था, बस he was a star. लोग उनको ही पहले पूछते थे, सुना आपकी शादी हो गई, तो just used to nudge. ना हाँ बोलते थे ना बोलते थे। That spoiled my career. क्योंकि महमूद साहब से अगर शादी हो गई है तो महमूद साहब तो अब इसको काम नहीं करने देंगे। See how he made my career and how he ruined my. उन्हें लगता था कि अगर ये हीरोइन बन गई तो he will be left alone.
2: इस टाइम अरुणा जी के करियर में ऐसा ब्रेक आया कि उनको sort of restart करना पड़ा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
4: I enjoy using inefficient and complex software, मामा।
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
6: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all in one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: Iselin, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucard's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Iselin, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Alucard's, world's favorite jeweler.

0: আমার জড়েগা নাই দিয়ে
1: ওজি কমেডিয়ান ওজি ভাইজান মাহমুদ স্পেশাল চারু কে সাথ অন পুরানি জিন্স ওনলি অন মির্চি
2: One of the most iconic characters played by Mehmood Sahab is Gumnaam film wala unka kirdar. Mirchi sun rahe hain aap, Purani Jeans par main hoon Charu aapke saath. Wo jo butler bante hain, domestic help bante hain us film mein, unka wo Hyderabadi accent wala kirdar, jisko yaad hai Amitabh Bachchan sahab ne bhi apne gaane, wo jo gana tha Khatoon ki khidmat mein Salaam Apun ka, usme literally copy kiya tha us character ko. Acha, is kirdar ke bare mein, महमूद साहब ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था सुनिए
3: क्या था कि एक मैं छोटा सा स्किट किया करता था मामू का अब मामू क्या है कि मामू नाक से बोलते हैं अब आप उसकी तारीफ करें तो बहुत तारीफ करते थे और जैसे आपने बोला कि मामू आप नाक से बोलते तो गालियां देते
2: वैसे इनका नाक से बोलने वाला किरदार दिल जिगर किडनी सब निकाल के ले गया सर और इसी फिल्म में तो था उनका वो आइकॉनिक गाना और वो डायलॉग
4: तू है हर गाई तो अपना भी यही तौर सही तू नहीं और सही और नहीं और सही हमें ख्यालों में काम चला लेंगे
5: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में
2: हकीकत में मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu सुनते रहिए मिर्ची
5: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा कहाँ भाग रही थू मैं
6: काले से डर गए क्या
7: हमें काले हैं

ताली तक धीमी तक ताली तक जमी तक धला आम तक धुग तक ताली के नक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामू तारी केटे ताली झुम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामू तारी केटे झम तारी जग तारी ताक नक तक तक झुम तक झुम तक झम तारी जग तारी जाने जाने को

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: આમાં જોડેગા ને જે
1: ઓજી કોમેડિયન ઓજી ભાઈજાન મહેમૂદ સ્પેશિયલ ચારો કે સાથ ઓન પુરાની જીન્સ ઓન્લી ઓન મિર્ચી
0: આમાં પકડ કે રખેગા જે.
2: हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी सीन्स में से एक है फिल्म प्यार किए जा का कॉमेडी सीन जो महमूद साहब और ओम प्रकाश जी पर पिक्चराइज था. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. और इस फिल्म में इस कॉमिक रोल के लिए महमूद जी को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था. इसके बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था.
3: मेरे को मिला, मुझे मिला, लेकिन 90% काम उनका था. मैं इम्बॉस हुआ उनके रिएक्शन से, जो रिएक्शन उन्होंने किया तो ऐसा, यानी टाइमिंग हम लोगों का और एक अंडरस्टैंडिंग आपस में.
2: एक्चुअली इफ यू सी दैट सीन ना, तो ये सीन आपको दो बार देखना पड़ता है, एक बार महमूद जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए और दूसरा उस पर ओम प्रकाश जी जो रिएक्ट कर रहे हैं.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
8: Inefficient,
9: very complex,
10: clumsy or
11: confusion ही confusion.
7: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Listener mein back to back gana sunega.
15: Back to back gana sunega.
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
17: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu.

0: আমার চলেগা নাই যে
1: ওজি কমেডিয়ান ওজি ভাইজান মাহমুদ স্পেশাল চারু কে সাথ অন পুরানি জিন্স ওনলি অন মির্চি
0: আমার পাকড় কা রাখেগা যে
2: जीवन में बहुत स्ट्रेस हो रहा है ना, तो एक काम करो, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यूट्यूब पे जाके महमूद कॉमेडी सीन्स टाइप करो और मजे लो। मैं भी जब ऐसा कर रही थी तो उनके जो फेमस सीन्स है ना, पड़ोसन के या प्यार किए जा फिल्म के, बॉम्बे टू गोवा, वो सब कॉमेडी सीन्स तो आ रहे थे। तब मेरी नजर पड़ी एक और कॉमेडी सीन पे, पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन आप ये डायलॉग सुनो उनका जरा।
3: ज्योति, तुम्हारे लिए खबरी खुश है, मैं जो हूँ ना, मैं अस्पताल में जितने वार्ड बॉय है ना, उनकी यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया हूँ। बस अब तुम जल्दी से बीमार होकर अस्पताल चली आओ, फिर देखो मेरे विटामिन एम में जो तासीर है वो किसी डॉक्टर की दवाई में नहीं। अगर डार्लिंग तुम बीमार नहीं हो सकती हो तो वो जो तुम्हारा बाप है ना, पापी कठोर कसाई, उस मेंढक को यहाँ फौरन भेज दो, ताकि मैं उसकी टटर हमेशा के लिए बंद कर दूं।
2: 25 सेकंड के बाद में कितनी कॉमेडी कर गया ये बंदा, कॉमेडी लेजेंड फॉर अ रीजन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
10: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: આમાં ચોરેગા નહીં છે.
1: ઓજી કોમેડિયન, ઓજી ભાઈજાન, મહેમૂદ સ્પેશિયલ, ચારુ કે સાથ, ઓન પુરાની જીપ્સ, ઓન્લી ઓન મિર્ચી.
2: देश में भाषाओं को लेकर कितना बवाल होता है आए दिन. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. और ऐसा आज नहीं हो रहा है, पहले भी होता था. सुनिए पुराने इंटरव्यू में महमूद साहब ने क्या शेयर किया था कि जब वो अलग अलग जगह शूटिंग करने जाते थे तो क्या होता था.
3: आउटडोर बेंगलोर गया था, वहाँ पे एक आदमी मेरे को बोला कि भाई साहब ऑटोग्राफ साइन करो. मैं ऑटोग्राफ साइन करके उसको दिया तो उन्हें बोला इंग्लिश में नहीं, तुम्हें तेलुगु में ऑटोग्राफ साइन करो. मैं बोला भाई इंग्लिश के साइन सीखने के लिए मेरे को 6 महीने लग गए थे, अब तेलुगु के ऑटोग्राफ साइन करने के लिए मालूम नहीं कितने साल लगेंगे. खैर वहाँ से जब मैं दिल्ली गया तो एक साहब बोले हिंदी में ऑटोग्राफ साइन करो. दिल्ली से पूना आया तो एक साहब मेरे को बोले कि मराठी में ऑटोग्राफ साइन करो. पूना से जब मैं गया अहमदाबाद तो एक साहब बोले कि गुजराती में ऑटोग्राफ साइन करो. मैं एक्टर आदमी इसमें फंस गया, मेरे लिए तो गुजरात क्या, महाराष्ट्र क्या, मद्रास क्या, बंगाल क्या, सब एक ही बराबर है. मैं बहुत सोच सोच के एक आइडिया निकाला. जब कभी भी कोई भी मेरे पास आएगा आके बोलेगा कि महमूद मियां ऑटोग्राफ दो जरा साइन करो, तो मैं बजाय साइन करने के उनको अपना अंगूठा दे दूंगा.
2: सही बात है, इस तरह की कोई बात करे तो अंगूठा दिखा दो. वैसे आजकल अंगूठा दिखाने का मतलब भी बदल गया है. अंगूठा दिखाना मतलब लाइक करना. पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्च.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Mirchi Bioscope. Saad Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
3: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है. न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था. एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
4: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है.
3: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहां पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें. इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है. एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है. कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है. इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं. ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को. वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा. आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है. तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से. ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है. बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है. ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है. एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी. टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्ची, 3.5 स्टार्स. ओडिसी एक बार अवश्य देखिए और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj.
2: साथ जीतूराज,
5: only on Mirchi. It's hot.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची.

0: हमें छोड़ेगा नहीं थे।
1: ओजी कॉमेडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी चीज़, ओनली ऑन मिर्ची।
0: अब पकड़ कर रखेगा जे
2: पुरानी फिल्मों के, एक्चुअली पुरानी फिल्मों के क्यों? द कॉमेडी किंग महमूद साहब इतने पॉपुलर थे, उनके सीन्स का इतना बेसब्री से फिल्मों में इंतजार किया जाता था कि हीरोज एक्टर्स उनसे डरते थे, घबराते थे कि भाई कहीं फिल्म में महमूद तो नहीं है, ये सारी लाइमलाइट ले जाएगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक टेलीविजन कॉमेडी शो पे धर्मेंद्र साहब ने महमूद जी के बारे में क्या कहा था।
3: ये मेरा बहुत जिगरी था, ये वाहिद कॉमेडियन था जिसे हीरो डरते थे सिवाय धर्मेंद्र के। जो मजा आया इसके साथ, आउटडोर इंडोर हंसते हंसते बल पड़ जाते थे।
2: अच्छा, इस बारे में खुद महमूद साहब ने सुनी एक इंटरव्यू में क्या कहा था।
4: मैं आपको बिल्कुल सही बात बताता हूँ, होता क्या था कि वो मेरे काम से नहीं डरते। वो क्या है कि सब हीरो लोग की आदत है ना, हीरोइनों पे लाइन मारने की, हीरोइन आई तो जरा कॉलर वॉलर यूँ करके, तो ये कॉलर ऊपर ही करते रहते थे और मैं अपना काम कर जाता था।
2: देख रहे हैं आप टैलेंट साहब का, सीधी सादी बात को कैसे कॉमेडी बना देते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

रहा तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा दिल पे हाथ से लिख ले बात ये वादा ये रहा।

0: আমার জ্বরে কেন এসে?
1: ওজি কমেডিয়ান, ওজি ভাইজান, মাহমুদ স্পেশাল, চারু কে সাথ, অন পুরানি জিন্স, ওনলি অন মির্চি।
2: एक बार किसी इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन साहब से उनकी एक्टिंग में कॉमेडी के बारे में बात की जा रही थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तब उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि भाई जो एक्चुअली कॉमेडियंस हैं उनके आगे अमिताभ बच्चन साहब की कॉमेडी कुछ भी नहीं है। किन कॉमेडियंस का जिक्र किया था बच्चन साहब ने, सुनिए।
3: And I've always admired two comedians in the film world. I admired many of comedians. These two stand out. One is Mahmood Bhai and one is Nagesh from South. There used to be a lot of exchange of films between the two. Nagesh was a comedian. Eventually, films were made around him as the main character. And Mahmood Bhai was the same thing. Started off as a junior artist dancer in a group dance. And look where he reached. And it was Guru Bhatt who discovered. He was a group dancer. And then from there, his talent. And then films used to be made with him as the title. Great comedian, great artist.
2: वैसे ये तो आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन साहब के करियर में महमूद साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उनके स्ट्रगलिंग डेज में महमूद साहब ने अपनी प्रोड्यूस्ड फिल्मों में उनको काम करने का मौका दिया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: कहीं।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिम।
5: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची खा।

0: আমার জড়েগা নাই যে
1: ওজি কমেডিয়ান ওজি ভাইজান মাহমুদ স্পেশাল চারু কে সাথ অন পুরানি জিন্স ওনলি অন মির্চি
2: की फन फिल्म बॉम्बे टू गोवा मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ विच वॉज को प्रोड्यूस्ड बाय महमूद जी जो इस फिल्म में एक्टर भी थे और अमिताभ बच्चन के करियर की ये काफी इम्पोर्टेंट फिल्म थी। इस फिल्म से और अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक इंसिडेंट एक पुराने इंटरव्यू में महमूद जी ने शेयर किया था, सुनिए।
3: बहुत मजा आया था और हम लोग बॉम्बे से निकले वी वेंट अप टू गोवा। अब एक गाना था उसमें, अब ये गाने पे अमिताभ साहब डांस नहीं कर पा रहे, देखा ना है सोचा ना है। वो गाना बस के अंदर पिक्चर जोड़ा था तो जब मैं शूटिंग पर गया तो बोले अमिताभ को बुखार आ गया 102-103 और वो रूम में चले गए। तो मैं गया, तू रो रहा
4: है? मुझसे नहीं होगा डांस, मास्टर जो बता रहा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगा भैया।
3: हमने देखो जो आदमी चल सकता है ना वो डांस भी कर सकता है मेरे हिसाब से। हाँ तुम आज रेस्ट करो, कल आओ और कल देखो इंशाल्लाह होगा सफल।
2: आगे क्या हुआ सुनते हैं थोड़ी देर के बाद राइट हियर पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।
5: ओहो अरे कोई सास तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू।
6: नहीं नहीं नहीं भाभी ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामू का बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
7: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
6: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
8: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है.
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: ओजी कॉमेडियन, ओजी भाईजान, महमूद स्पेशल, चारों के साथ ऑन पुरानी जीप्स, ओनली ऑन मिर्ची।
1: अमिताभ बच्चन साहब की करियर के शुरुआती दिनों में एक शख्स जिन्होंने उनकी काफी मदद की थी वो थे द कॉमेडी किंग महमूद साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। महमूद साहब ने उनको न सिर्फ बहुत सारी फिल्मों में काम दिलवाया बल्कि अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लीड रोल भी दिया। इस फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन साहब डांस नहीं कर पा रहे थे, तब सुनिए महमूद साहब ने उनकी लाइफ थोड़ी इजी कैसे की। एक इंटरव्यू में महमूद साहब ने शेयर किया था,
2: अमिताभ साहब डांस नहीं कर पा रहे, बोले अमिताभ को बुखार आ गया 102-103, मैं गया तू रो रहा
3: है, मुझसे नहीं होगा डांस, मास्टर जो बता रहा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा भैया।
2: मैंने अपने मास्टर से कहा कि देखो कल पहला शॉट लो, अगर शॉट खराब भी हुआ ना तो बस में जो 40 बड़े सब ताली बजाओ जोर जोर से और आगे बढ़ाओ, दूसरा शॉट रिटेक मत करो। अच्छा वाह वाह वाह, क्योंकि एक्टर की मेन खुराक उसकी तारीफ। तो हमने सबको समझा दिया, अब ये आए मेकअप रूम में मेकअप कर रहे हैं, ये गए जाके उन्होंने शॉट दिया, इतना गंदा शॉट दिया लेकिन लोग ताली और गाना आगे। अब वो जो मूड में आया लंबू और फिर डांस करने लगा, आखिरी में वो पहला शॉट लिया जो खराब दिया।
1: भाई नेक्स्ट टाइम आप जब ये गाना देखें तो ये बात ध्यान रखिएगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Saad Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है। होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहां पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया और हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स। ओडिसी एक बार अवश्य देखें और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
9: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

थर्स्टी का वाइब जब आता है ना, अंदर से एक अलग ही स्पार्क ऑन हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, स्टेप्स थोड़े फास्टर हो जाते हैं, थॉट्स थोड़े शार्पर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा लाउडर हो जाता है। या जैसे कि ना फेवरेट सॉन्ग का पहला बीट ड्रॉप हुआ हो और बॉडी ऑटोमेटिकली मूव कर जाए। और पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यार थर्सडे आते आते ना प्रेशर पीछे रह जाता है, पॉसिबिलिटीज आगे आ जाती है, काम भी थोड़ा बहुत हो का होता है पर उसके साथ एक एक्साइटमेंट भी छुपी होती है। जी हाँ, आज का दिन इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि एक दिन और वीकेंड आने ही वाला है। तो आप भी बताइए कि आपका स्पार्क किस चीज से आया है आज, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा स्पार्क तो हमेशा आपके लिए धमाकेदार गाने बजाने से ही आता है। तो चलिए इवनिंग का पहला गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो,
4: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
3: स्पीकिंग.
4: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
3: हाँ, sure.
4: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
3: जी.
4: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
3: बोल कौन रहे हैं?
4: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
3: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
4: बिल्कुल
3: अलाउ नहीं करते हैं. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
4: सही बात है,
3: गर्ल्स को नहीं देंगे.
4: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
3: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
4: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं
3: हाँ, आप किससे बात कर रहे हैं?
4: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
3: हेलो.
4: हाँ बोलिए.
3: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
4: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
3: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
4: हाँ?
3: नकली तरह से आप मेरे से
4: नहीं,
3: बातें कर
4: नहीं
3: रहे हैं.
4: नकली तरीके से क्या?
3: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
4: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
3: तो कोई बकौती है
4: नहीं? बात नहीं, तमीज सीख ले.
3: नहीं तमीज, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी है.
4: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया.
3: Oh my.
4: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: From the finest kitchens in India, thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
8: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
7: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
8: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
13: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा.
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
2: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो। उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है, और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।

0: Tuesdays 4:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों कभी कभी लाइफ में ना स्ट्रेंजर्स भी फैमिली जैसे लगने लगते हैं। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे हॉस्पिटल का वेटिंग रूम हो या वो स्ट्रेसफुल मोमेंट जब किसी अपने के रिपोर्ट्स का वेट हो, उस वक्त एक काम वॉइस, एक केयरिंग नर्स या फिर एक हेल्पफुल टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और शायद इसीलिए हेल्थ केयर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं लगता, एक रीअश्योरेंस लगता है। और अगर आप भी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जहाँ आप भी किसी के हेल्प का रीज़न, किसी के राहत का रीज़न बन सकते हो, तो आज ही कॉल कीजिए एम्स एजुकेशन को, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, एट 9082220002, 9082220002, या फिर आप विजिट कर सकते हो aimseducation.edu और डिस्कवर कीजिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के कितने सारे अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रहे हैं। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
4: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा। ते तू किस तरह टप आया?
3: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
5: बागी ते आशिक हद्दां सरहदां टप ही आउंदे ने।
3: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
6: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
3: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज़ गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्कनामा।
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Beep cow to jano.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और 2005 में रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली, यानी 20 साल हो चुके हैं इस एल्बम को, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही रेलिवेंट है। तो आज हमने सोचा कि आज की शाम में ऐसे ही टाइमलेस गानों के बारे में जो कि बंटी और बबली के एल्बम में है उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में कुछ खास किस्से शेयर की जाए। और आज का जो पहला गाना है फ्रॉम दिस एल्बम इज ऑब्वियसली वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स, कजरा रे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक फ्रेम में एक साथ इसी गाने में नजर आए थे, और सिर्फ कोई ऐसा वैसा गाना नहीं था, एक आइटम सॉन्ग था। तो काफ़ी हिचकिचाहट थी अमिताभ बच्चन के लिए भी, ऐश्वर्या राय के लिए भी, कि शायद उनसे ये गाना नहीं हो पाएगा। लेकिन वैभवी मर्चेंट ने, जो कि इस गाने की कोरियोग्राफर रही है, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि नहीं यार, ये गाना आप सब लोग बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, इस गाने का सेटअप भी इतने अच्छे से किया जाएगा और ये गाना आइकॉनिक बनेगा, ये विश्वास वैभवी जी को था। इतना ही नहीं, ये वो पहला गाना था जो गुलजार साहब ने एज अ फर्स्ट आइटम सॉन्ग लिखा था। और वैसे तो गुलजार साहब काफ़ी सारे जो इंस्पिरेशन होती है उनके गानों के लिए वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों से लेते हैं, लेकिन इस गाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी ऐसे डीप चीज़ से इंस्पिरेशन नहीं ली जा सकती। तो इन्होंने जो इस गाने के लिए इंस्पिरेशन ली थी वो थी नॉर्थ इंडियन जो ट्रक्स होते हैं उसके पीछे जो मैसेजेस लिखे होते हैं उससे, जैसे कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही इस गाने में एक लाइन है कि जालिम नज़र हटा ले। और ऐसे ही ये गाना बना वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स रिटन बाय गुलजार साहब। तो जी हाँ, आज सुनते हैं कजरा रे, बंटी और बबली के एल्बम से जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स शंकर महादेवन की आवाज में। और वैसे तो कजरा रे के काफ़ी सारे सिंगर्स रहे हैं, मतलब जावेद अली, शंकर महादेवन, अलीशा शिनाई, और लेकिन ऑफकोर्स उसका जो एंड पार्ट है जिसमें वो गाते हैं कि तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ा आए कहानी दिल्ली में, तो जी हाँ, ये जो पार्ट है वो मेरा भी फेवरेट पार्ट है। आई होप आपको भी ये गाना पसंद हो, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट टाइमलेस एल्बम, विच इज़ दैट टाइमलेस सॉन्ग जो आप हमेशा सुनना पसंद करते हो। टेल मी ऑन आरजे मिर्ची सिद्दी, SIDDHI। और फिलहाल आज बंटी और बबली के गानों के बारे में बात होगी, तो विच मीन्स कि ये जो कजरा रे गाना है ये हमारे लिस्ट का पहला गाना है। तो और भी गाने आने वाले हैं, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर

0: anytime.
1: वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ ऐसे खास गाने बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी बातें हो रही है कि यार बंटी और बबली के एल्बम को, जो कि रिलीज हो चुकी थी 2005 में, इस एल्बम को हो चुके हैं 20 साल, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही पॉपुलर है, उतने ही अमेजिंग है। और कजरारे के बारे में तो हमने बात की, लेकिन वन ऑफ द अदर सॉन्ग्स दैट आई एब्सोल्युटली लव इज धड़क धड़क। जी हाँ, ये गाना गाया है उदित नारायण जी ने और सुनिधि चौहान ने, कंपोज्ड बाय नन अदर देन म्यूजिक मेस्ट्रो शंकर महादेवन। और ये गाना जब बन रहा था तब इसकी जो फिल्मिंग होने वाली थी, तब डिसाइडेड था कि ये गाना बनते हुए इसकी फिल्मिंग जो रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के जो होम टाउन्स है, रिस्पेक्टिव होम टाउन, जो कि छोटे शहर है, वहाँ पर ही होनी चाहिए, क्योंकि यार तब लोगों को लगता था कि बड़े शहरों वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही कूल होते हैं। एंड ये पूरा नैरेटिव इन्होंने डिसाइड किया था कि चेंज करना है, नहीं, क्योंकि छोटे शहरों से भी जो छोटी छोटी बातें होती है, जो छोटा छोटा फैशन सेंस होता है, वो अमेजिंग होता है। और ये जो गाना बनाया गया था वो लिखा भी इसी तरीके के लिए गया था, इसी सीक्वेंस के लिए गया था कि छोटे छोटे शहरों से, आधी भोल दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। तो जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा एक ऐसा गाना बनाया गया था जिससे हमें हमारे उन छोटे छोटे शहरों की याद आती है जहाँ से हम आए हैं। तो इस गाने की ये खासियत तो थी ही, बट इतना अमेजिंगली ये गाना नॉट जस्ट गाया गया है बल्कि फिल्म भी किया गया है। तो इसी याद में आज इस गाने को प्ले करते हैं। वैसे बंटी और बबली एक ऐसा आइकॉनिक एल्बम है जो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है, इवन आफ्टर 20 ईयर्स। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है, जिसको 20-25 साल हो चुके हैं बट आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और बंटी और बबली का और एक गाना जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूं, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोलो।
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको?
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर, आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का?
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर, जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपका मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ, 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
3: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है, मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल न्यूज खोलो ना तो हर जगह एक ही वाइब है, चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन, मार्केट शिफ्ट। और नेचुरली जब इतना सब चेंज हो रहा हो तो नए होम बायर्स के माइंड में एक ही सवाल आता है कि क्या अभी सही टाइम है या वेट करना चाहिए। और ऐसे टाइम पे पैनिक नहीं, राइट गाइडेंस मैटर करता है, क्योंकि हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज भी होती है, बस उसे सही तरीके से कोई समझाने वाला चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो ऐसे सिचुएशन में भी बोले कि यार डोंट फियर, वी आर हियर। तो चलिए उसी के लिए बुलाते हैं बीश को फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: जय सियाराम मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। हॉट डे आउट देयर एंड टुडे द यूएस मार्केट्स आर गेटिंग क्रश्ड आफ्टर फ्रेश बिग टेक अर्निंग्स एंड ऑयल सर्ज एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द मार्केट्स। मॉर्गेज रेट्स हैव रीच्ड देयर हाईएस्ट लेवल इन नियरली अ ईयर एज द ईरान वॉर कंटिन्यू टू एस्केलेट, stroking fresh fears from investors about inflation and oil price. The average 30-year fixed rate rose to 6.5% and 15-year fixed mortgage rate rose to 5.875%. As inventory improves in many markets, more prospective buyers are finding opportunities to enter the market even as borrowing costs remain elevated. So friends, buying your dream home, advice is free, pre-approval is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, 30-year fixed mortgage rate, 6.5%. 20-year fixed mortgage rate, 6.25%. 15-year fixed mortgage rate, 5.875%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Also remember, listeners, there are two products that are very popular right now. Yes, we are offering DSCR loans. That is, you can buy investment property with 20% down payment, no income documentation required. Second one is, if you don't qualify for a home loan, but if you have money sitting in your bank account, in your bank loan, we can qualify with your money from your down payment your income from your bank statements, which is also called bank statement loans. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.

0: starts 5:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बातें हो रही है कुछ टाइमलेस गानों के बारे में। और 2005 में यानी 20 साल पहले रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली के यार सारे गाने अमेजिंग है। मतलब 20 साल हो चुके हैं लेकिन इस एल्बम के तो एक से बढ़कर एक गाने हैं। और कजरारे के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, धड़क धड़क इस गाने के बारे में हम बात कर चुके हैं। द थर्ड सॉन्ग इन दिस एल्बम विच इज़ रियली ब्यूटिफुल इज छुप छुप के, जिसे गाया गया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे यार इस गाने की एक खास बात है कि एक रोमांटिक सॉन्ग तो है ही, एक बहुत ही ब्यूटिफुली कंपोज सॉन्ग है, लेकिन इस गाने को जब रिकॉर्ड किया गया था तब शंकर महादेवन ने इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 3 बार रुकाई थी बीच में, क्योंकि यार तब वो गाना इतना ब्यूटिफुली रिकॉर्ड हो रहा था कि गाने के बीच में ही उनको गूज बम्स आ गए और उनका जो पार्ट था, उनका जो कंपोजिशन था, बीच में ही समवेयर वो अमिस हो गया एंड उस वजह से उनको ये गाना 3 बार ऑलमोस्ट रोकना पड़ा। तो जी हाँ, इतना ब्यूटिफुल कंपोजिशन है छुप छुप के फ्रॉम बंटी और बबली का एल्बम विच वॉज मेड इन 2005। यार 20 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी ये गाना उतना ही ब्यूटिफुल है, उतना ही टाइमलेस है और उतना ही हमारे दिल में घर कर चुका है। वैसे ऐसा कोई और गाना है, ऐसा कोई और एल्बम है तो आप अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, टाइमलेस सॉन्ग जो आपके दिल में आज भी है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए बंटी और बबली का छुप छुप के, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है। होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया और हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्ची, 3.5 स्टार्स। ओडिसी एक बार अवश्य देखें, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad chakhti. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
10: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका यूएसए फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहां हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेंस वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। आज हम बातें कर रहे हैं टाइमलेस सॉन्ग्स के बारे में और 2005 की रिलीज्ड एल्बम बंटी और बबली एक ऐसी आइकॉनिक एल्बम थी जिसके सारे ही गाने आज भी उतने ही अमेजिंग लगते हैं, आज भी आप सुन सकते हो, आज भी उस पर डांस कर सकते हो, जैसे कि कजरा रे। वैसे यार हमने ये सारे गाने सुने हैं और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो आ रहे हैं मेरे पास कि आपको कौन सा गाना टाइमलेस लगता है, और इतने सारे जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है उसमें ये गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो रिक्वेस्ट किया गया है प्रिया की तरफ से। प्रिया इज़ फ्रॉम जर्सी सिटी एंड वो कहती है कि जब भी मेरा बॉस मुझ पे चिढ़ जाता है या मेरी मॉम मुझ पे चिढ़ जाती है, तब से मतलब 20 साल पहले 2005 में ये गाना रिलीज़ हुआ था, तब से लेकर आज तक उनको शांत करने के लिए मैं मन में या उनके मुंह पे कभी कभार यही गाना गा देती हूँ। एंड द सॉन्ग इज़ जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। जी हाँ, जब भी मेरे भी मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं खुद को यही कहती हूँ, और जस्ट चिल बोलना होगा तो नॉर्मली हम नहीं बोलते, गाने में ही बोलते हैं जस्ट चिल चिल, जस्ट लाइक सोनू निगम। तो 2005 का ही ये गाना है, 20 साल हो चुके हैं जस्ट चिल को। तो आज प्रिया जी आपके लिए वो मैं प्ले करने वाली हूँ। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट वन टाइमलेस सॉन्ग फॉर यू जो आज भी आप गुनगुनाते हो। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI एंड आई प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virpa, la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: ओके।
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है,
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी?
1: Talking about?
2: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep Cow, the Jano.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
13: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
14: शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका इस गोल्डन आवर में। दोस्तों देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है, बरकत हो रही है, लोग घर खरीद रहे हैं और इतनी सारी खुशियां ही खुशियां आ रही है क्योंकि यार ये तो समर के वाइब्स ही ऐसे होते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर कई सारे सवाल आते हैं, स्पेशली जो लोग अपने घर पे अलग अलग पूजा करवाते हैं उस सिलसिले में। तो आज उसी सवाल के जवाब ढूंढते हैं हमारे जो गोल्ड एक्सपर्ट है बॉबी बंसल जी, उन्हीं से पूछते हैं इन सारे सवालों के जवाब। तो नमस्ते बॉबी जी, स्वागत है आज की इस खूबसूरत शाम में इन आर गोल्ड डिकोडर सीरीज, जहां होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ।
15: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी। दोस्तों आप सबको भी ब्यूटीफुल हैप्पी एंड हेल्दी आफ्टरनून. पहले तो सिद्धि जी, आपके सवाल से पहले, गोल्ड का प्राइस $4,050 $4,050 पर ट्राय ट्रेड कर रहा है. आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस $4,100 प्लस चले गए थे, लेकिन वापस मार्केट करेक्शन के साथ $4,050 पर ट्राय ट्रेडिंग कर रही है. और हम चाहते हैं कि जैसा आपको पता है कि 0% एंड जीरो डाउन पेमेंट अप्रूव होने पे 9 month की फाइनेंसिंग अवेलेबल है, ताकि आप गोल्ड का प्राइस लॉक करके आज ज्वेलरी खरीद लीजिए अप्रूव होने पे. और मैं तैयार हूँ आपके उस खूबसूरत सवाल के लिए.
14: बिल्कुल बॉबी जी, पहले तो थैंक यू सो मच गोल्ड के अपडेटेड रेट्स हमें एवरी डे बताने के लिए. और दोस्तों देखिए, वैसे तो शादियों का सीजन चल रहा है और बॉबी जी ने हमारी काफी मदद की है टू अंडरस्टैंड द न्यू ट्रेंड्स ऑफ ज्वेलरी. लेकिन ये जो सवाल है वो मुझे आया है काफी सारे आप लोगों से ही, कि जिनको भी घर में पूजा करनी होती है, एक स्पेशल टाइप का कॉइन आता है, लक्ष्मी कासू गोल्ड कॉइन, अलग टाइप का गोल्ड होता है ये, अलग टाइप का धातु होता है. और बहुत सारे लोग जिनको पूजा में यू नो ट्रेडिशनली हमेशा से रखते आ रहे हैं, उनको उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए. तो बॉबी जी, कासू कॉइन के बारे में हमारे लिसनर्स को क्या बता सकते हो?
15: देखिए, कासू बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर बात की जाए तो साउथ इंडिया में स्पेशली पूजा के अंदर जो लक्ष्मी का कॉइन है 1 ग्राम का, उसको कासू कॉइन बोलते हैं. ये 22 कैरेट गोल्ड का होता है, शुद्धता से भरा होता है. और जरूरी नहीं है, देखिए राज ज्वेल्स, जैसा मैंने आपको बोला, आपके आंखों और दिल के करीब रहे. जरूरी नहीं है कि हर बार रानी हार, जलेबी नेकलेस या डायमंड की वडयानम की ही बात करनी है, क्योंकि आपकी वो जो पूजा है जिसमें शुद्धता से भरा, आप प्योरेस्ट ऑफ इमोशन एंड प्योरेस्ट ऑफ हार्ट के साथ प्योरेस्ट ऑफ गोल्ड पूजा करना चाहते हैं, वो लक्ष्मी के कासू कॉइन्स राज ज्वेल्स पे अवेलेबल हैं. जनरली 1 ग्राम की डिनोमिनेशन में आते हैं. अगर आप साउथ इंडियन वेडिंग में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो थाली के मंगलसूत्र हैं उसके अंदर भी कासू का पेंडेंट लगता है. सो सिद्धि जी, पहले तो ये प्योर सोने का होता है 22 कैरेट गोल्ड का, और हमारे पास राज ज्वेल्स के पास हर डिनोमिनेशन का अवेलेबल है. सिर्फ कासू का कॉइन नहीं, मैं आपको बोलूंगा सोने के, अगर आपको फूल पूजा में भगवान को अर्पित करने हैं तो सोने के फूल या चांदी के फूल भी आपके लिए राज ज्वेल्स में अवेलेबल है. हम मेक श्योर करते हैं कि जरूरी नहीं कि चाहे एनिवर्सरी हो, शादियों में, सेलिब्रेशन में राज ज्वेल्स आपके साथ रहे. देखिए, वो बड़ी से बड़ी पूजा, वो खूबसूरत इमोशन से भरी, प्यार से भरी, फीलिंग वाली पूजा में भी राज ज्वेल्स आपके साथ जुड़ा रहे. तो चाहे वो कासू का कॉइन हो या सोने का फूल हो या सोने की कटोरी, फीलिंग वाली पूजा में भी राज ज्वेल्स आपके साथ जुड़ा रहे. तो चाहे वो कासू का कॉइन हो या सोने का फूल हो या सोने की कटोरी हो, सोने की चम्मच हो,

खरीदते ही है, उसी के साथ साथ पूजा घर सजाने के लिए आपसे इतने सारे ऑप्शन सुनने मिले हैं। आई एम श्योर हमारे जो सारे लिसनर्स हैं आज ही जाएंगे राजजूल्स.com पर और ये सारे ऑप्शन चेकआउट करेंगे। तो दोस्तों आज ही जाइए राजजूल्स.com पर और अपने पूजा घर के लिए जो भी आपको प्यारी प्यारी चीजें खरीदनी है आपको वहां मिल जाएंगी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: with their roots or maintain our traditions?
1: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
0: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
6: Tera kya hoga, Kalya?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: at 6:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है टाइमलेस सॉन्ग के बारे में जो यार 20-25 साल पहले बने थे लेकिन आज भी उतने ही रेलेवेंट है, आज भी उतनी धूम मचाते हैं। और आज का जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम महेश हु इज फ्रॉम एडिसन। और महेश कहते हैं कि उनको जो सॉन्ग रिक्वेस्ट यहाँ पर देनी है दैट इज फॉर द सॉन्ग रंग दे बसंती फ्रॉम द मूवी ऑफ कोर्स रंग दे बसंती, 2005 में रिलीज हुई थी। और इसका जो टाइटल ट्रैक है, जितने जोर से जितने एनर्जेटिकली 2005 में लोग नाचते थे उतने ही एनर्जेटिकली 20 साल बाद आज भी इस गाने पे धूम मचती है, डांस होता है और उतने ही दिल के करीब है। तो चलिए आज महेश के रिक्वेस्ट पर बजाते हैं रंग दे बसंती। वैसे दोस्तों, विच इज दैट वन टाइमलेस सॉन्ग दैट यू एब्सोल्युटली लव? टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और आपके लिए वो गाना मैं प्ले करूंगी राइट हियर ऑन मिर्ची। तब तक के लिए रंग दे बसंती राइट हियर, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरुदेव।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
11: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। आज की जो शाम है डेडिकेटेड है फॉर द टाइमलेस सॉन्ग्स, जो कि यार बने थे 20-25 साल पहले, लेकिन आज भी उतने ही रेलिवेंट है, आज भी दिल के उतने ही करीब है। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग रिक्वेस्ट इज फ्रॉम यू गाइज, और वो सॉन्ग रिक्वेस्ट है फॉर द सॉन्ग बुमरो बुमरो मिशन कश्मीर का ये गाना है, जो फरमाया गया है ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा पर। और यार ये जो गाना है इसकी एक बहुत ही खास बात है, वैसे तो इसे गाया गया है जसपिंदर नरूला, शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान ने, लेकिन जब ये गाना बनाया गया था, यानी ओरिजिनली जब ये गाना बनाया गया था, तो दैट ओरिजिनल सॉन्ग इज संग बाय दीनानाथ नदीम, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी ट्यून थी बुमरो बुमरो, जो कि कश्मीरी ओपेरा का पार्ट था। तो जी हाँ, वहां से ये गाना इंस्पायर्ड है। और आज हमारे शो में इस गाने को रिक्वेस्ट किया है प्रीति ने, जो कि है फ्रॉम जर्सी सिटी। तो प्रीति प्रीति जिंटा का ये गाना सुनना चाहती है, मिशन कश्मीर का बुमरो बुमरो। वैसे इस गाने के साथ आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी सारे लोगों की मेमोरीज होंगी, क्योंकि वन ऑफ द एक ऐसा गाना है ये जो बचपन में इस पर हम सब ने डांस किया होगा, स्पेशली स्कूल के फंक्शंस में। मतलब मेरे साथ तो इतना बड़ा ट्रोल हुआ है इस गाने के साथ कि मैं जब अपने स्कूल में थी तब मैं इस गाने पे डांस करने वाली थी, एंड मुझे प्रीति जिंटा नहीं बनाया गया था, मतलब आई वॉज नॉट इन द गर्ल्स पार्ट, आई वॉज इन द गाइज पार्ट। तो मैं ऋतिक रोशन की तरह बस ऐसे हाथ हिला रही थी, सो आई वॉज प्लेइंग द ऋतिक रोशन पार्ट एंड नॉट प्रीति जिंटा पार्ट, बिकॉज यार इतनी सारी लड़कियों को इस गाने पे डांस करना था कि लड़कियों के स्लॉट फुल हो चुके थे, तो इसलिए मुझे और बहुत सारी लड़कियों को हमको ऋतिक रोशन का पार्ट दे दिया गया था। सो येस, आई एम प्रीटी श्योर ये गाना उतना स्पेशल सभी के लिए होगा, एंड आप में से कई सारे लोगों ने बचपन में इस गाने पे डांस तो ज़रूर किया होगा, स्पेशली स्कूल्स या अपने कॉलेज फंक्शंस में या ऐसे ही कहीं पर। तो अगर आपने भी किया है तो मुझे ज़रूर बताइए, टेल मी ऑन माई इंस्टा हैंडल @rjmirchisiddhi, और उसी के साथ साथ आप अपनी टाइमलेस सॉन्ग रिक्वेस्ट भी मुझे भेज सकते हो। तो जल्दी से DM मी, और फिलहाल सुनते हैं बुमरो बुमरो फ्रॉम मिशन कश्मीर एट प्रीतीज रिक्वेस्ट राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieva la burga.
1: Milci, burga. हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग,
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें यह है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी,
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे।
2: सही बात कह रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
1: आप किससे बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
1: हेलो,
2: हाँ बोलिए।
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
1: साहब, मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें कर
2: नहीं,
1: रहे हैं।
2: नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
1: तो कोई बपौती है क्या?
2: नहीं बात नहीं, तो तमीज सीखिए।
1: नहीं
2: तमीज,
1: नहीं नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है।
2: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया।
1: Oh my.
2: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
12: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
13: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
12: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
14: लिस्नर ए मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
16: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
17: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है एक लेजेंडरी बारिश वाले गाने से। जी हाँ दोस्तों, जब भी बारिश की बात होती है ना तब एक गाना दिमाग में जरूर आता है, टिप टिप बरसा पानी। वैसे तो यार स्क्रीन पे देखो ना तो फुल ऑन रोमांटिक लगता है, एकदम फुल रोमांस इन द रेन। लेकिन पर्दे के पीछे रवीना टंडन जी ने बताया कि शूट कितनी ज्यादा टफ थी, मतलब रेन मशीन के साथ स्लिपरी फ्लोर और वो सारी और मल्टीपल रीटेक्स। वैसे तो यार डांस ग्लैमरस तो लगता है, स्पेशली रवीना जी इन द येलो साड़ी पर। सेट पर सबको बैलेंस मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो समझे दोस्तों, मतलब बॉलीवुड में ना यार रेन सॉन्ग रोमांटिक तो लगता है लेकिन पर्दे के पीछे सबकी बैंड बजती है। वैसे क्या आपने कभी इस गाने पे रेन में डांस करने की कोशिश की है? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient.
3: Very complex.
4: Clumsy hoy.
5: Confusion hi confusion.
2: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road.

0: इज अल न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab, mirchi kha.
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: at 7:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है एक एवरग्रीन गाने के पीछे से। जी हां, गाता रहे मेरा दिल। यानी आपने जब ये गाना देखा होगा तो लगा होगा कि वाह क्या हिल्स है, क्या लोकेशन है, फुल पोस्ट कार्ड वाइब्स। देवानंद जी भी गाते हुए पहाड़ों में घूम रहे थे, एकदम केयर फ्री मोड। पर पर्दे के पीछे का सीन ना थोड़ा हटके था। देवानंद को पूरा यकीन दिलाया गया था कि ये जो शूट होने वाला है वो रोहतांग पास पे हो रहा है। रियलिटी चेक तो ये थी कि रोहतांग पास था ही नहीं, लोकेशन असल में 12 किलोमीटर दूर कहीं और ही थी। और जब देवानंद जी को पता चला तो वो बोले कि यार ये क्या था, मतलब गाना चल रहा है गाता रहे मेरा दिल और पर्दे के पीछे डायरेक्टर बोल रहे कि यार चलता है थोड़ा सा झोल, मतलब ये क्या हो रहा है। तो कुछ कभी कभी ना मतलब एक्टर्स को भी इस तरह से समझा बुझा के थोड़ा बहुत उल्लू बनाकर ऐसे लोकेशन पे लेके जाते हैं जो लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप समझ गए कि यार लोकेशन भी कभी कभी एक्टिंग करती है और सच इंटरवल के बाद ही रिवील होता है। तो दोस्तों ऐसे पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किस्से अगर आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताना @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।